कोई बोले राम राम, कोई बोले खुदाया, पर रब ता तुहाडे मन विच है ते रब एक ही है। तुसी जिहदे विच विश्वास करते हो उहनां दे विच विश्वास रखो। तुहाडियां मुश्किलां, तुहाडियां प्रॉब्लम्स सारियां परमात्मा जरूर खत्म करेगा।

तकदीर दे लिखे ते कोई शिकवा ना करे बंदिया, तू इन्ना अकलमंद नहीं हैगा जो खुदा दी इरादे नू समझ सके। परमात्मा तुहाडे लई बहुत कुछ करदा है, पर तुहानू यकीन बनाना पएगा कि हाँ परमात्मा तुहाडे नाल है। अज दा दिन शुरू करदे होए तुसी रब दा नाल हो ते रब दा नाल लै के देखो, सुकून बहुत मिलेगा।

दिल से निकले दुआ ये हमारी, हर सुबह हो खुशियों से भरी तुम्हारी, जिंदगी में आए सिर्फ प्यार के रंग, जुड़े रहो FM रेनबो के संग। जी हाँ दोस्तों, तुसी ट्यून कीता 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते, मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक ते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम जिहड़ा है शुरू हो गया है। चलो जी, सवेर की किरण वाला जिहड़ा टाइम है ना, वह भी हो गया है, उदा भी हो गया है चमकन का टाइम। FM रेनबो दे मूड भी है प्राइम, जिथे नॉलेज भी मिले ते मस्ती भी साथ। शुरू हो गया जी तुहाडा अपना प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर, हर दिन एक नवी बात। हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, आपको कभी कोई रुला ना पाए, खुशियों का दीप ऐसे जले जिंदगी में कि कोई तूफान भी उसे बुझा ना पाए। सो आज दी सवेर जिहड़ी है ना, बहुत खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया गुड मॉर्निंग जलंधर। तो तुसी भी आई होप उठ गए होवोगे, 7:05 हो गए ने, तो उठन का टाइम भी हो गया है, तो बहुत सारिया गल्लां बातां करन का टाइम भी हो गया। सो खम्मा गणी जी उठ जाओ, मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

चलो जी अगला गाना सुनते हैं। तू तक तूतिया, मलकीत सिंह की आवाज़ दे विच प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी तुसी, महक की आवाज़ दे विच। लव यू जिंदगी नहीं, गुड मॉर्निंग जलंधर।

0: गैजेट्स उधर को सारे अवेलेबल ने, तो वो रियल वर्ल्ड विच है ही नहीं, उधर एक अपनी दुनिया है, तो वो कल्ला जी रहा है, तो इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं रही, कोई क्वालिटी टाइम उधर ना स्पेंड नहीं कर रहा, वो बस अपनी स्टडी कर रहा है या तो वो फोन यूज कर रहा है, एक्टिविटी कोई है ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो होती जा रही है अज के टाइम, तो ये सब तो बड़ा बड़ा कारण है
1: जी। ते जिदा तुसी कहा कि काफी ज्यादा बच्चे अजकल फोन यूज कर रहे हैं, ते बच्चियां दे नाल नाल अजकल मैं वेख रही हूँ कि पेरेंट्स भी अपना समा जेड़ा है फोन्स नू काम नू ज्यादा दे रहे ने, सो पेरेंट्स दी किन्नी ज्यादा इंपोर्टेंस हुंदी है बच्चियां दे बिहेवियर दे विच।
0: एक्चुअली इहदा सब तो वड्डा रीजन ए वी है कि फैमिली न्यूक्लियर हुंदी जा रही है, मतलब एक फैमिली विच पेरेंट्स हुंदे आ बच्चे हुंदे आ, हुण पेरेंट्स दोने वर्किंग आ
1: जी,
0: बच्चे वास्ते वो या तो उन्होंने किसी क्रच विच पाऊंगे या तो उदे वास्ते कोई हेल्पर रखूंगे जिदा मेड वगैरह जेडे रखते होंगे
1: जी,
0: ते वो कनेक्टिविटी बच्चे नाल बना ही नहीं पा रहे क्योंकि वर्कलोड उन्हां पर बहुत ज्यादा है, ता इदे विच पेरेंट का रोल ए हो सकता है कि जिन्ना भी टाइम वो कढ़ सके अपने बच्चे लई उन्हां नूं जरूर कढ़ना चाहिदा है, ते जद उन्हां दा बच्चा फ्री बैठा है उन्हूं फोन ना दो। मैं कई पेरेंट्स नूं ए भी देखा है रोटी खिलाने वक्त फोन फड़ा देना कि बच्चा चुपचाप रोटी खा लेगा,
1: सही गल,
0: या तो फिर वो शरारत कर रहा है, हर बच्चा शरारत करता है, समान सुटदा है खलारा पाता है ये कॉमन आ, बट वो खलारे तो बचन लई भी उन्हूं फोन फड़ा देना कि टिक्के बह जूंगा एक जगह, लेकिन तुसी ए नहीं देख रहे कि ये फोन कितना ज्यादा खराब कर रहा है थोड़े बच्चे की मेंटल हेल्थ नू, थोड़े बच्चे की इमोशनल हेल्थ नू, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो पेरेंट्स नू ज्यादा ध्यान देना चाहिए हुण
1: जी। ते जिदा ए ता गल हो गई कि पेरेंट्स नू बच्चियां ते ध्यान देना चाहिए, चलो पेरेंट्स ने बच्चियां ते ध्यान देना शुरू भी कर दिता, लेकिन पेरेंट्स नू किवें पता लगेगा केड़े ओ साइंस ने सिग्नल्स ने कि साडा बच्चा जेड़ा है साडे तो कोई चीज लुको रहा है या टेंशन दे विच है प्रेशर है उहदे ते, किवें पता लगेगा पेरेंट्स नू?
0: सब तो वड्डा चेंज आंदा है बच्चे दे बिहेवियर विच।
1: हां जी,
0: जे तुसी ऑब्जर्वर वधिया हो या तुसी कदे भी अपने बच्चे नू ऑब्जर्व पहला कीता है, तां तुसी बहुत छेती पहचान जोगे थोड़े बच्चे विच कोई चेंजेस आए नहीं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा या खान पीन विच तंग करेगा ज्यादा, ओवर ईटिंग करना या फिर ना खाना, या फिर हो सकता है कि गुस्सा करना बिना गल तो, गुस्सा करना नॉर्मल है बट जब बिना गल तो गुस्सा हो गए दैट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है, बिना गल तो गुस्सा करना, मार कुटाई करना, चीजा नु सूटना, ये सारी चीजा देख रहे हो कि बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, या सोना नहीं या तो सुते ही रहना, सुस्ती पाई रखना, ये सारे तुसी चेंजेस जब देख रहे हो तो थानू ध्यान देना चाहिए है भी कुछ तो प्रॉब्लम है।
1: ते मैम जिहड़ी साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ये सानू दसदा है कि बंदे दा बिहेवियर किहो जिहा हुंदा है भावें वह छोटा होवे वड्डा होवे, ते बच्चे मोस्टली अपने बिहेवियर दे नाल सानू दसदे ने, अपने जेस्चर्स नाल दसदे ने कि उहनां दे विच चल की रहा है दिमाग दे विच, सो चाइल्ड साइकोलॉजी नू समझण लई पेरेंट्स नू सब तो पहला केड़ी गल याद रखनी चाहीदी है?
0: सब तो पहला तो पेरेंट्स ने यह याद रखना चाहिए है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट होंगी है,
1: हाँ जी,
0: तुसी उनू अपने अकॉर्डिंग टाल नहीं सकते, हाँ जी, तुसी उदे विच पॉजिटिव चेंजेस जरूर ला सकते हो, जे थानू लगता है कोई नेगेटिव एटीट्यूड मेरे बच्चे के अंदर आ रहा है तो उनू पॉजिटिवली चेंज तुसी कर सकते हो, इट्स पॉसिबल, लेकिन तुसी एक बच्चे नू पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंगली क्योंकि वो पपेट नहीं है, वो एक इंसान है
1: जी,
0: ठीक है, सानू ये समझना पड़ेगा सब तो पहले कि बच्चियां दी अपनी सोच है, उन्हां दी भी पसंद ना पसंद होंदी है, तो सब तो पहली गल है कि अपने न्याणियां नाल थोड़ा टाइम स्पेंड तुसी करो, उन्हां नू ध्यान नाल सुनो बिना रोके टोके बिना उन्हां नू जज करे, ताकि वो खुल के अपनी फीलिंग तुहाडे नाल शेयर कर सकन, फिर तुसी एज अ पेरेंट उन्हां लई की कर सकदे हो ये देखो, कट्ठे मिलकर वर्क करो, जे तुसी सिंगल पेरेंट हो दैट्स डिफरेंट थिंग, तुसी एज अ फैमिली वर्क करो जिहड़े भी लोग तुहाडी फैमिली विच ने, बट जे तुसी फादर मदर दोनों कट्ठे हो तां एज अ पेरेंट

जी हाँ दोस्तों, तुसी रेडियो कीता 102.7 मेगाहर्ट्ज़। मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी, गुड मॉर्निंग जलंधर। ते प्रोग्राम दे विच हुणे असी गल कीती सी नवनीत मैम दे नाल, ते

ने। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। अमेरिका, जापान, नीदरलैंड, ओमान, मॉरिशस, युगांडा, जैम्बिया, श्रीलंका, नेपाल ते कीनिया समेत 70 तो वध देशों के 500 तो वध एथलीट इस 5 दिनों के प्रोग्राम विच हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 6:40 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस प्रोग्राम विच हिस्सा लेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्हें कहा कि इस मुकाबले ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच से लियाने का काम किया है। भारतीय पहलवान आज तो मंगोलिया विच उलानबतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट विच अपनी मुहिम की शुरुआत करेंगे। 4 दिनों के इस टूर्नामेंट विच भारतीय खिडारी मर्दों के फ्री स्टाइल, औरतों के कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबलों विच हिस्सा लेंगे। भारत ने औरतों की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप विच भूटान नूं 1-0 नाल हरा के फाइनल विच अपनी थां पक्की कर ली है। कल गोवा के मारकाओ विच खेडी गई सैमीफाइनल मैच विच भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल विच पहुंची। खेड के 58वें मिनट विच सनफिदा नोंगराम ने गोल करके विश्व रैंकिंग विच 69वें स्थान की भारतीय टीम नूं फाइनल विच पहुंचाया। चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले विच शनिचरवार नूं 5 बार के चैंपियन भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश नाल होएगा। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली च वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रीगेज नाल गलबात करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह मेघालय के शिलोंग विच उत्तर पूर्वी कौंसल के 73वें पूर्ण सैशन की प्रधानगी करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि भारत अमरीका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने तो कुछ हफ्ते दूर। ईडी वालों भारत के कंबोडिया तो काम कर रहे मानवी तस्करी सिंडीकेट की जांच के संबंध में पंजाब ते उत्तर प्रदेश में छापेमारी। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 होएगा। नमस्कार।

ने लिखी है जी, जब तक ना थी अपने गुनाहों पे नजर, जब तक ना थी अपने गुनाहों पे नजर, देखते रहे दुनिया के ऐबो हुनर, जब पढ़ी अपने गुनाहों पे निगाह, नजर में कोई बुरा ही ना रहा। किन्नी सोहनी गल गई है ना कि जदों तुसी अपने आप नू वेखोगे, जदों अपनी पीढ़ी हेठ जिहड़े सोटी मारोगे, तां तुहानू पता लगेगा बुरा तां कोई भी नहीं है। यानी अपना नज़रिया चेंज करो, बुरा कोई भी नहीं हुंदा। तुसी किसे नू सोहना वेखोगे उह सोहना लगेगा, किसे दे विच कमियां कढोगे तां उह माड़ा ही लगेगा। चलो जी, गर्मियां दियां छुट्टियां दी अज असी बहुत सारियां गल्लां बातां कीतियां। आई होप जिन्ने सानू मैसेज भेजे गए ने उह सारे असी सुनाए ने, यानी कि तुहाडे तक पहुंचे ने, तुहाडे दोस्तां ने भी सुने ने। फिलहाल असी एक होर गीत सुनांगे, जाना किते भी नहीं है क्योंकि 8 मिनट हले बाकी है। ते गर्मियां दी छुट्टियां दे विच काफ़ी चीज़ां असी कीतियां, सुनियां, साडे दोस्तां ने दस्सिया कि किस तरीके दे नाल उन्हां ने अपनी छुट्टियां नू इंजॉय कीता पहला दे टाइम दे विच ते हुण। पहला दे टाइम दे विच दोस्त की करते सी, खुद इंजॉय करते सी, हुण दे टाइम दे विच उह अपने बच्चियां नू इंजॉय करवाउंदे ने। चलो ये भी यादां ही ने।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च वेनेजुएला दे कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज नाल गलबात करनगे। गृहमंत्री अमित शाह मेघालय के शिलोंग विच उत्तर पूर्वी कौंसल के 73वें पूर्ण सैशन की प्रधानगी करनगे। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि भारत अमरीका व्यापार समझौते अंतिम रूप देने तो कुछ हफ्ते दूर है। ईडी वालों भारत कंबोडिया तो काम कर रहे मानवे तस्करी सिंडीकेट की जांच के संबंध में पंजाब ते उत्तर प्रदेश में छापेमारी। पंजाब च वोटर सूचियां की विशेष गेंद सोध तहत वोटर की प्री मैपिंग 7 जून राजभर के सारे वोट केंद्रों ते विशेष कैंप लाए जाएंगे। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 17 होर मेडिकल प्रक्रियावां मंजूरी दे दी है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पारों तस्करी करन वाले नेटवर्क नाल जुड़े 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। वड्डी गिनती विच गोली सिक्का बरामद किया है। गुरदासपुर दीनानगर ते कादियानगर कौंसल दीयां चोणां लई नामजदगियां दाखिल करन दा अमल कल खत्म हो गया है। पंजाब भाजपा के नेता केवल सिंह ढिल्लों ने भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान वजों कार्यभार संभाल लिया है। पहली विश्व योगासन खेड चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। तो भारत ने भूटान को 1-0 नाल हरा के औरतों के फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल च थां बनाई। इस सन हुण तक दी एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

म्यूजिकली आज आकाशवाणी एफएम रेनबो 10:40 अरे अरे अरे मेनू पता है कि आराम शुरू हो चुका है और आराम देखो बहुत बढ़िया वाला है ना जी, क्योंकि जिन्हें भी प्लान बनाए हुए ना हूं तक कि छुट्टियां च आप आ करना है करना है वो करना है वो मैंने पता शुरुआत हो चुकी है। और जो जून का मंथ आता है ना कुछ लोगों लिए ना ये जून का महीना वाकई बहुत खास होता है। हम देखो मैं भी पहली बार होने देखो इस महीने की शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन आज मेरे नाल और थोड़ी नाल जी मुलाकात है ना वो आज के दिन हो रही है। सो रिचा आ चुकी है जी एक बार फिर 102.7 FM रेनबो दे और प्रोग्राम गीत बहार दी शुरुआत भी करांगी लेकिन इस तो पहला कुछ तो कर

ये जो आप हमेशा करते हैं। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं क्या जी की हाल चाल? हाल चाल बहुत बढ़िया ने, क्योंकि रिचा भी जुड़ गई है थोड़े नाल। और मेरे साल मैंने पता बहुत सारे दोस्त इस टाइम 102.7 FM रेनबो ट्यून इन करके और न्यूज़ ऑन या यार ऐप के जरिए भी जो दोस्त सानू सुन रहे ने, उन्हें सारे का वेलकम कर रही हैं। जिम्मे कि तुम वेलकम किया इस महीने का, और कितने कितने जा रहे हो, की कुछ प्लैनस है ना जी, बहुत सारिया गलां बातें होनगियां थोड़े नाल। फिलहाल प्रोग्राम गीत बहार की मैं कर रही हूँ जी शुरुआत, और अली सफर की आवाज़ के नाल इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। तो उस तो बाद मिल रही हूँ तुम्हें सिर्फ विद ही स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक।

कह रहे इस गाने दे विच पूछे तू है कहां। अरे अरे अरे मैं दस दिया। हुण देखो ये वाला गाना सुन के तुहानू बेशक मजा आ गया होगा, लेकिन सोशल मीडिया ते अपनी फ्रेंड्स दियां जिहड़ियां चिलिंग वाइब वालियां फोटोज तुसीं देख रहे हो ना वेकेशन वाली, वो देख के बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। दिल कर रहा है कि असीं भी जाइए, है ना, पर अजे भी काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दोस्त होंगे है ना जिन्हां नू इंतजार है कि इस महीने दे विच हो सकता है किसी एक वीकेंड च सानू छुट्टी मिले ते आपां भी जाइए। सो लाइफ दे विच देखो ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ब्रेक तुहानू मिल भी गया है फिर भी कोई ना कोई घर का मैंबर है जो बड़ा लेजी है, जा नहीं रहा कि अगला गाना ना, वो मैं चला रही हूँ प्ले कर रही हूँ, और उसनों ये वाला गाना सुनाओ तो उन्होंने कहो चल हूँ लेजीपन छड़ दे, ब्रेक लै और चल चलिए फिर कितने।

सो इस गाने नु देखो एंजॉय करते करते मेरे दिमाग दे विच भी ना एक आइडिया आया, और ये आइडिया ये है कि मैं तुहानू क्यों दसा, मेरा आइडिया है, मैं अपनी तक ही रखांगी। सो जेकर तुहाडे माइंड च भी बहुत सारे आइडियाज जिहड़े ना दिन ब दिन चलते रहते हैं, और अजकल तो देखो छुट्टियां का टाइम है, हो सकता है बच्चों के नाल मिलकर कुछ तुसी भी नवा एक्सप्लोर कर रहे हो, नए आइडियाज के काम कर रहे हो, तो जरूर करना, क्योंकि तुहानू पता है आइडियाज जिहड़े ना वह आइसक्रीम के वांगू ही होंगे ने। हुण जेकर एक्शन ना लो, मेरा मतलब आइसक्रीम ना खाओ, तो ओबवियसली आइसक्रीम ने मेल्ट हो जाना है। गर्मी बहुत है, गर्मी ना भी हो ना तां भी आइसक्रीम ने मेल्ट हो ही जाना है। इस करके अपने आइडियाज़ नू मेल्ट ना होण दिओ, माइंड दे विच कोई आइडिया था उहदे ते वर्क करना स्टार्ट करो, एक्शन मूड दे विच आओगे तां ही गल बननी है। फिलहाल गल बन रही है जी अगले गाना, इंजॉय करांगे असीं मिलके, स्टे ट्यून्ड।

वैसे बुला था तुहानू FM रेनबो ते भी रही हूँ मैं, लेकिन फिलहाल इस टाइम नहीं बुला रही। 11 बजे तो लैके 12 बजे तक जो प्रोग्राम होएगा जी पंजाबी तड़का, वो तुम हाजिरी अपनी लगवा सकते हो और तुम आओगे मैंने पता है। और बहुत सारे दोस्त इस टाइम व्हाट्सएप के जरिए भी FM रेनबो के नाल जुड़ रहे हैं, अपने मैसेजेस जोड़े ने भेज रहे हैं। सो मैं उन्होंने दसना चाहवागी जी इस टाइम नहीं 11 तो 12 आप कॉल के जरिए मिलेंगे 0181 2342 174 नंबर डायल करके उस टाइम पंजाबी तड़का के अपनी हाजिरी तुम लगवाओगे। तो फिलहाल चल रहा है जी प्रोग्राम गीत बहार 10:45 47 सैकेंड रिचल तुहाडे नाल जुड़ी हुई है ते मेरे नाल इस टाइम बहुत सारे दोस्त इंजॉय कर रहे हैं। सो अगला गीत इस सिलसिले च आदित्य रिघारी की आवाज़ विच स्टे ट्यून्ड।

FM ਬੈਂਡ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਨੇ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च वेनेजुएला दे कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोडगिरेज नाल गलबात करनगे। गृहमंत्री अमित शाह अज मेघालय दे शिलोंग विच उत्तर पूर्वी कौंसल दे 73वें पूर्ण सैशन दी प्रधानगी करनगे। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दा कहना है कि भारत ते अमरीका व्यापार समझौते नूं अंतिम रूप देण तों कुछ हफ्ते दूर ने। ईडी वालों भारत ते कंबोडिया ते काम कर रहे मानवीय तस्करी सिंडीकेट की जांच के संबंध में पंजाब ते उत्तर प्रदेश में छापेमारी। पंजाब च वोटर सूचिया की विशेष गैन सो तहत वोटर की प्री मैपिंग 7 जून राज भर के सारे वोट केंद्रां ते विशेष कैंप लाए जाएंगे। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना तहत सूचीबद्ध निजी हस्पतालों में 17 होर मैडिकल प्रक्रियावां नूं मंजूरी दे दित्ती है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पारों तस्करी करन वाले नेटवर्क नाल जुड़े 2 मुलजमान नूं गिरफ्तार किया है ते वड्डी गिणती च गोली सिक्का बरामद किया है। गुरदासपुर दीनानगर ते कांदियानगर कौंसल दीआं चोणां लई नामजदगियां दाखिल करन दा अमल कल खत्म हो गया है। पंजाब भाजपा के नेता केवल सिंह ढिल्लों ने भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान वजों कार्यभार संभाल लिया है। पहली विश्व योगासन खेड चैंपियनशिप अज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है ते भारत ने भूटान नूं 1-0 नाल हरा के औरतों के फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल च थां बनाई। एह सन हुण तक दी FM न्यूज़ हेडलाइंस।

सो आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.7 एफएम रेनबो एंड 11:45 रेनबो दे देखो इस टाइम इस आवाज़ नु सुन के दोस्तां नु पता ही लग गया कि आज देखो रिचा भी आई है और रिचा दे नाल जेड़ा प्रोग्राम पंजाबी तड़का लेके आ रही है तड़का लगन वाला जी हुन फरमाइशा दा ते नाल ही नाल गल्लां बातां भी होन गया है ना जी। सो बहुत सारे दोस्त इस प्रोग्राम च मेरे नाल लाइव जुड़ना चाहते हैं और अपनी दिल की गलबात भी देखो तुसीं करोगे मेरे नाल और अपनी जिहड़ी पंजाबी गीतां दी फरमाइश है मेरे को लेके पहुँचोगे इस टाइम। सो नंबर एक बार उन्होंने दोस्तों के लिए अनाउंस कर रही हूँ जिहड़े कि बिल्कुल नवे नवे जुड़े ने, यार लेटेस्ट कनैक्शन है जी दिल का है ना जी दिल से। तो ये जो कनैक्शन है ये किमें पूरा होएगा किमें जुड़ेगा, सो 0081 43 174 नंबर नू डायल करके तुसी मेरे नाल इस टाइम रिचा दे नाल प्रोग्राम च लाइव जुड़ना और अपनी जिहड़ियां पंजाबी गीतां दियां फरमाइशां ने वह पूरी करो के ते नाल ही नाल। बहुत खास दिन है कल दा, देखो बहुत खास दिन है लेकिन वो जिहड़ा दिन है ना वो साडी लाइफ दे विच हर एक दिन नाल जुड़िया होया दिन है ना। सो शुरुआत करांगी मैं प्रोग्राम दी फिलहाल गिप्पी गरेवाल दी आवाज़ दे नाल इस गीत दे नाल ते उस तो बाद अगले दोस्त नू प्रोग्राम च पहले पहले दोस्त नू लैके पहुँच रही हूँ डायरेक्ट फोन लाइन दे जरिए। स्टे ट्यून्ड विद एफएम रेनबो दिल से दिल तक।

सिर्फ काला नहीं जनाब, बहुत सारे रंग होते हैं रेनबो च, और ना रंगा के नाल बनता एक सोहना जहा कलरफुल रेनबो। और 102.7 FM रेनबो ते इंजॉय करो तुसी प्रोग्राम पंजाबी तड़का। हेलो हेलो बोल नहीं रहे हो कि या फिर नेटवर्क च प्रॉब्लम आ गई है मेरे ख्याल नाल। हेलो चलो जी कोई टेंशन नहीं है। देखो कई बार ये होंगे कि दोस्तों की कॉल लगती है ना, और कई बार ये होंगे कि नेटवर्क कहता है तुसी दोनों साइड हो जाओ पहला मैं है ना, सो नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो कोई टेंशन नहीं है, जो दोस्त साढ़े नाल जुड़ते जुड़ते रह गए हैं और अगली बार जुड़ सकते हैं, और फिलहाल जोड़े जुड़न की कोशिश कर रहे हैं 0181-2342-174 नंबर डायल करके तुसी इस प्रोग्राम च लाइव मेरे नाल जुड़ सकते हो। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे जी मैं मर्जी क्यों जी जनाब अजी तक खुश हो के रवांगे और बड़ी प्यार नाल अपने दोस्तों का वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम च पंजाबी तड़का दे विच। हेलो
1: हेलो मैम सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन दोस्त गल करने ते किथो? जगशीर जी, इन्नियां हवावां दी आवाज़ां क्यों आ रही है, मैनूं ये दसो, पक्खे अगे बैठे हो?
1: बस मैम हवा बंद करती है पर।
0: अच्छा इन्नी गर्मी लग रही है। चलो देखो एक हुंदा ना कनेक्शन नहीं हुंदा कि एक नंबर देखो बनिया है और दोस्त ओहदे नाल जुड़दे ने इस प्रोग्राम च अपनी हाजिरी लगवांदे ने, कितना सोहना लगदा है। चलो जी शुक्रिया। तुसी की कुछ चंगा कर रहे हो अपनी नेचर ले प्रकृति ले कुछ कर दे हो खास की नहीं?
1: देखो साफ सफाई तो चलता ही रहिंदा जिंदगी ते। हां जी
0: बस साफ सफाई कर दे हो गई जिम्मेदारी पूरी होर कुछ नहीं करना?
1: बस ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ ਰੱਖੀਦਾ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ।

0: बंदे दे क्यों
1: हाँ
0: बोझ
1: जी
0: पाना। बहुत बढ़िया लगे थोड़े नाल करके गल करके। तो अज गीत कड़ा सुनना दसो।
1: हाँ जी, सानू भी बहुत चंगा लगा तुहाडे नाल गल करके। ते गीत तुहाडी पसंद दा चलूगा, घेंट जिहा चला दो इक वधिया जी।
0: अच्छा ठीक है जी, फिर कॉल करने के लिए शुक्रिया। और चलो फिर आप अगले गीत में इंजॉय करते हैं। और देखो कल का दिन जो मैं कह रही हूँ ना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि जरा पर्यावरण दिवस है ना जी। सो बहुत खास दिन इसलिए नहीं है कि कल का दिन एक खास होगा। 5 जून नू आप सिर्फ सेलिब्रेट किया, 2-4 बूटे लाए, सेल्फीज क्लिक की और बस हो गया विश्व पर्यावरण दिवस। नहीं जी, असं रोज़ अपने वालों कुछ छोटिया छोटिया देखो चीज़ा कर रहे हैं, है ना। कुछ आदतां ने जो साड़ियाँ अपने नेचर लिए, कुछ उन्होंने आदतों आप चेंज कर सकते हैं। जेकर हजे तक आप कुछ नहीं किया, शुरुआत कर सकते हैं अज तो ही, है ना। कल की वेट क्यों कर रही, कल की सैलीब्रेशन तो होएगा जो होएगा, लेकिन अज तो ही आप शुरुआत करिए। और जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ खास कर रहे हैं उन्होंने तो मैं कह रही हाँ जी, एक है ना क्लैबिंग तो होनी चाहिए है, ब्लिक क्लैबिंग। और जेकर तुसी भी कुछ खास कर रहे हो तो मेरे नाल कर सकते हो जी शेयर। फिलहाल अमरिंदर गिल की आवाज़ से प्रोग्राम का अगला गीत असं मिलकर इंजॉय करते हैं जी। स्टे ट्यून्ड।

0: सारे तो वैसे नंबर भी पता है जी 01812342174 और ताही ता इस नंबर नु डायल करके प्रोग्राम पंजाबी तड़का च देखदे हैं जी कौन दोस्त अपनी हाजिरी जेड़ी लगवा रहे ने। हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन दोस्त गल कर रहे ने?
1: मैडम राजकुमार शर्मा लुधियाने तो बोल रहे हैं जी।
0: राजकुमार जी लुधियाने तो आ गई है कॉल, की हाल चाल लुधियाना वाले हो?
1: हाल चाल बहुत बढ़िया जी, गर्मी हो गई है दोबारा।
0: अच्छा दोबारा हो गई?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: अजे तो तीजी बार भी होनी है, चौथी बार भी होनी है, गर्मी तो अजे रहूगी। बिल्कुल देखो जो भी सीजन है, हुन देखो गर्मी का टाइम है, गर्मी अगे बरसात आ जाएगी है ना, फिर ठंड आ जाएगी, हर एक चीज का टाइम है। तो फिलहाल तुहानू पता किस चीज का टाइम है? फरमाइश पूरी करन दा। तो राजकुमार जी कल देखो बहुत खास दिन है और मैं पहली कह रही हूँ कि शुरुआत हुन तो ही होनी चाहिए है, दसो के
1: बिल्कुल जी मैडम शुरुआत तो बढ़िया ही होनी चाहिए।

0: जाओ, सामान लेके आओ। कौन थानू रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा, शुरुआत करो अपने वालों से पहला।
1: इधर बहुत प्लास्टिक का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दुनिया में, पेशेंट बहुत मरीज पड़ गया जी। डॉक्टर भी की कहने बेचारे, उन्हें पेशेंट नहीं है जितने, डॉक्टर हम की कहने थोड़े है डॉक्टर जी।
0: चलो राकेश कुमार जी, मैं कह रही हूँ बहुत वधिया तुसी मैसेज दिता, अज सानू सैर भी कराया है उत्तरकाशी दी। हुण गीत दस दो केड़ा सुनना फटाफट। मैनू लगता है कि मैं भी कह नहीं लगी सी, हुण विआह दी गल चली सी तां आपां थोड़ी जी हुण बोलियां इंजॉय करिए, है ना जी। कॉल करन दे लई शुक्रिया। और वधिया लगता जदों देखो दोस्त जांदे ने किते बाहर, हो सकता तुहाडा भी प्लान बन रहा हो इस टाइम, है ना, छुट्टियां दे विच अपने बच्चियां नूं लै के किते बाहर जा रहे हो तुसी भी, और पहाड़ां दे देखो जा रहे हो या फिर किते भी जा रहे हो, है ना। एक जिहड़ा सिविक सेंस है ना, समझ गए हो ना मेरी गल, सुन रहे हो ना सारे। हाँ, जाके गंदगी नहीं फैलानी है उत्थे। अरे यार बहुत वधिया, अपने कोल अपना एक बैग रखो अपने कोल, और उस बैग दे विच अपने जो भी गंदगी है, जो भी समान है, कूड़ा है, उन्हें इकट्ठा करो, और जिथे भी डस्टबिन दिख रहा है या फिर जिथे भी तुहानू लग रहा है कहीं ना कि ये डस्टबिन लगा है, उत्थे जाके तुसी उस जो भी वो बैग एक पूरा बना लिया उन्होंने जाके थ्रो कर दो, इंस्टेड कि तुसी जगह जगह सड़क दे खोली खिड़की का शीशा और गया बाहर तुहाडा कूड़ा उड़ के। फिलहाल उड़ के आ रहा अगला गाना, एंजॉय कर लो मेरे इस मैसेज के नाल। स्टे ट्यून्ड।

0: वैसे ना इस गीत में सुन के वाकई वेडिंग वाली एक फीलिंग आ रही है, लगा जब फंक्शन चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, और सेलिब्रेशन के विच एक दोस्त साडे नाल जुड़ गए ने। हेलो,
1: सुबह और शाम काम ही काम। आज आए हैं रीचा मैडम प्रोग्राम में, क्यों नहीं लेते दोस्तों पंजाबी तड़का प्रोग्राम का नाम।
0: ठीक है जी, ठीक है, नाम ले लिया। कौन है दोस्त?
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर।
0: सतीश जी स्वागत है प्रोग्राम चे तुहाडा, की हाल चाल है? वधिया हो?
1: वधिया वधिया, फर्स्ट क्लास है जी।
0: चलो बहुत वधिया होना चाहिए। और अज गीत केड़ा सुना, क्योंकि टाइम साडे कोल बहुत थोड़ा रह गया इस प्रोग्राम चे।
1: गीत मारो साडे, चलो कोई गल नहीं, साडे तुसीं ला दिओ जी गीत। अज की होया कुड़ी जे तू चंडीगढ़ दी, मैं भी जट दिलकुशा मार्केट।

ਐਫਐਬੈਂਡ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਐਫਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली च वेनेजुएला दे कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड रिगेस नाल गलबात करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय दे शिलोंग विच उत्तर पूर्वी कौंसल दे 73वें पूर्ण सैशन दी प्रधानगी करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि भारत ते अमरीका व्यापार समझौते नूं अंतिम रूप देण तों कुछ हफ्ते दूर ने। ईडी वालों भारत ते कंबोडिया तो कम कर रहे मानवी तस्करी सिंडीकेट की जांच के संबंध में पंजाब ते उत्तर प्रदेश में छापेमारी। पंजाब च वोटर सूचियां दी विशेष गैंद सोध तहत वोटरां दी प्री मैपिंग लई 7 जून नूं राज भर दे सारे वोट केंद्रां ते विशेष कैंप लाए जाणगे। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना तहत सूचीबद्ध निजी हस्पतालां विच 17 होर मैडिकल प्रक्रियावां नूं मंजूरी दे दित्ती है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पारों तस्करी करन वाले नेटवर्क नाल जुड़े दो मुलजमान नूं गिरफ्तार किया ते वड्डी गिणती विच गोली सिक्का बरामद किया है। गुरदासपुर दीनानगर ते कादियां नगर कौंसल दीआं चोणां लई नामजदगियां दाखल करन दा अमल कल खत्म हो गया है। पंजाब भाजपा के नेता केवल सिंह ढिल्लों ने भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे प्रधान वजों कार्यभार संभाल लिया। पहली विश्व योगासन खेड चैंपियनशिप अज गुजरात के अहमदाबाद विच शुरू हो रही है। ते भारत ने भूटान नूं 1-0 नाल हरा के औरतों के फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल च थां बनाई। ए सन हुण तक दे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

सो 102.7 एफएम रेनबो, और रेनबो थे फिलहाल टाइम हो गया जी 12:02 थे 55 सेकंड, और मेरे ख्याल लाल बहुत सारे दोस्त इस टाइम थे, खास कर ट्यून इन करते ने एफएम रेनबो. क्यों? क्योंकि उन्होंने भी ये फेवरेट वाला प्रोग्राम, क्योंकि इतने मिलते ने जी कुछ तरीके, कुछ नुस्खे, कुछ DIY हैक्स जो साढ़े काम आ जाते हैं, है ना. किचन तो देखो बाहर निकली आप, और किचन तो बाहर निकल के वेड़े चो पहुँच जाइए, वेड़े चो बाहर निकलिए, थोड़ा अपनी गली चो पहुँच जाइए, गली चो बाहर निकलिए, तो अभी कितने ना कितने तो आप पहुँचेंगे जरूर. फिलहाल एफएम रेनबो तो तुसी पहुंच गए हो, और प्रोग्राम होम स्वीट होम की शुरुआत कर रही हूँ जी मैं यानी रिचा. और बहुत खास है देखो ये प्रोग्राम, क्योंकि हर एक चीज़ नू कवर करते हैं आप इस प्रोग्राम च, और जो पिटारा खुलता है जी इन्फॉर्मेशन दा, जानकारी दा, ता हर एक चीज़ दी जानकारी कोशिश करते हैं कि तुहाडे तक पहुँचाई जाए. और जो कुछ भी देखो कोई खास दिन है तो उस दिन की जानकारी तुहानू मिले, नाल ही नाल कोई खास एक्सपर्ट साढ़े नाल जुड़े हैं ना जी, और उन्होंने को असी जानकारी ली, और अज एक खास एक्सपर्ट भी इस सिलसिले साढ़े नाल जुड़नगे. बस कुछ ही समाज है उन्होंने गलबात आप करांगे. फिलहाल शुरुआत कर रही हूँ जी प्रोग्राम होम स्वीट होम दी, बड़ी फर्स्ट क्लास वाले गाने दे नाल शुरुआत हो रही है, और उम्मीद कर सकते हो तुसी हुण गाना फर्स्ट क्लास है, तो शो उस तो बाद की कुछ फर्स्ट क्लास होना है इस दे विच, तो मेरे नाल जुड़े रहो रिचा दे नाल, बहुत कुछ है खास. स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक.

सो जिन्ना फर्स्ट क्लास ये गाना उन्हें ही फर्स्ट क्लास होंगे नहीं है बैक्टीरिया जिमे की ई कोलाई साल्मोनेला स्टेफिलोकोकस कैंपिलोबैक्टर हूं तुम की कहोगे रिचा हेलो की हो गया तेनू आकड़ी मतलब केड़े बैक्टीरिया के नाम लै रही है जनाब ये बैक्टीरिया ने जो कि कारण बनते ने रीजन बनते ने पेट दर्द का उल्टी का और फूड पॉइजनिंग का ठीक है जी हूँ तुम कहो कि प्रोग्राम की शुरुआत किन्नी ज़्यादा अवेयर कर रही हूँ मैं थोड़ा और ये बैक्टीरिया जिन्हों का एक रीजन दसिया कि बीमारी सूँ हो सकती है ये तुम्हें पता सूँ कितने मिलते हैं बैक्टीरिया ये मिलते हैं साढ़े किचन च एक जो निका जहा आइटम है ना बिल्कुल रोज़ असं यूज़ कर रहे हैं लेकिन इग्नोर कर जाते हैं वो सफाई में एंड दैट इज़ भांडे साफ करने वाला जो स्पंज है ना अपना जी किचन स्पंज जिन्हों आप स्क्रबर भी कहते हैं हूँ देखो एक रिसर्च हुई है जर्मनी दे विच है ना जी और उदे ते ए दस्या गया है कि जेकर असी ये भांडे साफ करन वाला अपना स्क्रबर है अपना स्पंज हैगा ये जेकर असी रोज़ क्लीन नहीं कर रहे या फिर इनू हफ्ते दो हफ्ते बाद बदल नहीं रहे ना तो यकीन मानो ये एक टॉयलेट सीट तो भी ज़्यादा गंदा है बैक्टीरिया फैला सकता है इस करके बहुत ज़रूरी है ये जानकारी कि आप टाइम टू टाइम देखो इसनू चेंज करते रहिए वॉश करते रहिए हूँ देखो हर एक चीज़ सोहनी सोहनी कटलरी असं अच्छ किचन के सजा लें है ना किचन चु और इन सोहनिया चीज़ों आप वरतों करते हैं और बहुत सोहनी सोहनी रैसिपी भी बना रहे हैं लेकिन ये जी मेन चीज़ है ना जी जो कि बीमारी का कारण बन सकती है इनू लोड़ है चेंज करन दी ते इदी भी साफ सफाई रखन दी किदा मतलब किवें आप इनू साफ सफाई रखिए कुछ छोटे छोटे टिप्स ने तुहानू दसांगी मैं लेकिन इस गीत तो बाद मेरे नाल जुड़े रहो जी 102.7 FM रेनबो ते दिल से दिल तक

स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसी है ना जी फील हो रही है सानू कि बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है, स्टिल उहदे बावजूद असीं की कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे उहदे नाल अपने जिहड़े हैं सोहणी सोहणी समझ गए ना कटलरी नूं वॉश करी जा रहे हैं, लोड है कि उहनूं चेंज करिए और जेकर स्मेल आ रही है तो उसनों फटाफट उसी टाइम बदल दीजिए, जाइए मार्केट और एक नवा स्पंज जिहड़ा है वो लैके आइए। सो कुछ चीज़ां ने किचन दे विच खास मसालियां दा इस्तेमाल करके या फिर एक रेसिपी बना के असीं एक्सपर्ट नहीं बन सकते, छोटी छोटी चीज़ों नू फॉलो करके भी अगे वधिया जांदा। फिलहाल अगे वध रही हाँ जी मैं अगले गीत दे नाल, सो जुबिन नौटियाल दी आवाज़ दे विच प्रोग्राम दा अगला गीत इंजॉय करदे हां, ते उस तो बाद आ रही हां एक होर तरीका नुस्खा DIY हैक लैके तुहाडे तक। स्टे ट्यून्ड।

लेकिन करन दा तरीका भी है, हर चीज नु करन दा तरीका हुंदा, तो करना की है। देखो आपा जेकर नवे नवे आ है ना जी, और इस ट्रेंड नु फॉलो कर रहे हैं, ता अपना सब तो पहले देखो करना की है, अपना फेस चंगी तरह वॉश कर लेना है, ठीक है। और उस तो बाद एक कॉटन का ना क्लोथ लेना, साफ कपड़ा, कोई अपना तुसी हैंकी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और उस कॉटन के कपड़े के विच आपां लैने जी बर्फ के टुकड़े, तो उन्होंने अपने फेस से, खासकर अपनियां गलां ते चीक्स ते ना हौली हौली मतलब एक कह लो कि मसाज देनी है ना जी, बर्फ के टुकड़े नू कपड़े दे विच रख के। एक तो तरीका ये है, मतलब ज़्यादा ना सही, सिर्फ 2-3 मिनट की अपनी मसाज दे सकते हैं इस आइस क्यूब के नाल, सो ये फेशियल हो सकता है। या फिर इस अलावा जे बर्फ वाले ठंडे ठंडे पानी के अगर असी अपना फेस है ना जी विच दे रहे हैं, चेहरे नू अपने डुबो रहे हैं उस बोल दे विच, सो ज़्यादा ना सही, बस 10-15 सैकेंड ही उन्हू अपने पानी के रखना है। तो उस तो बाद एक साफ कॉटन के टॉवल के नाल उन्हू साफ कर लेना है। देखो फायदा इसका यही है सब तो बढ़िया कि एक तो साडा फेस जिहड़ा ना फ्रैश हो रहा है एकदम, मतलब फ्रैशनेस मिल रही है, ताजगी मिल रही है, और सवेरे सवेरे उठ के कर रहे हैं तो भी वधिया है। क्योंकि कई बार क्या होंगे ना, साडे जिहड़े चीक्स ते अपनियां गल्लां दी मैं गल करां फेस ते, कुछ ओपन सोर्स है ना कि हो जाते हैं, और उन्होंने पोर्सिस नूं बंद करन दे लई, क्लोज करन दे लई, या फिर ब्लैक हेड्स हो गए या नोज़ ते अराउंड, तो उन्होंने लिए ये चीज़ बहुत वधिया है। हुण कई लोग कह रहे हैं कि ये जी एंटी एजिंग भी है, ये आप जवान जे दिख रहे हैं, सोहने जे होर भी दिख रहे हैं, बट ये कोई सच्चाई तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ

होम स्वीट होम नहीं बन रहा है, जिन्हें भी मैंबर ने उदे विच है ना, छोटे बच्चियां तो लैके वड्डियां तक जिन्हें भी मैंबर ने हर एक दा सी ख्याल रखी है और शुरुआत एजुकेशन तो ही हुंदी है और सही जगह देखो एजुकेशन वो लै रहा है, सही एजुकेशन सही असीं उन्हूं दस रहे हैं कि जानकारी उसनों सही समय तो मिलनी चाहिए है, जे उस तक वो पहुँच रही है तो वाकई एज पेरेंट्स साड़ी जिंदगी सफल है और उन्हों का अगे फ्यूचर भी बहुत वधिया हो जाता है। फिलहाल वधिया वधिया गीत इंजॉय करते हैं जी प्रोग्राम होम स्वीट होम के, उस तो बाद मिल रहे हैं तुहानूं सिर्फ with a stay tuned.

सो वंस अगेन वेलकम बैक आजी 102.7 FM रेनबो तो एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम होम स्वीट होम वैसे एंजॉय कर रहे सी क्योंकि हुन टाइम कह रहा है कि चलो चलो रिचा आगे चलो अगले प्रोग्राम दी भी वारी आ रही है सो उम्मीद कर दिया कि आज जिन्ने भी तरीके थानू मतलब कुछ जानकारी हो सकता नवी जी जानकारी मिले हो तो उसनु कॉपी ते पेन ते नोट किता लैके है ना जी और हाइड्रेट है ना रखना अपने आप में बहुत जरूरी है पानी पीना गर्मी दे विच अपना ख्याल रखना अपने बूटियां दा ख्याल रखना प्लांट्स का और अपने पेट्स का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है घर से जिन्हें मैंबर ने छोटे छोटे है ना जी डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और कुछ खास बना रहे हो और कुछ नवा ट्राई करने तो पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बारी राय जी लै लेनी चाहिए है सलाह लेनी चाहिए है ना जी कुछ भी नवा जेकर असी स्किन के उत्ते ट्राई कर रहे हैं कुछ तरीके होंगे ने पैक बना लेंगे ने असी तो कुछ भी नवा ट्राई करने तो पहले एक बार टेस्ट जरूर करिए और कोई नसी नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो उसनू टेस्ट करिए है ना जी की कुछ खास बना रहे हो अज किचन दे विच बनाओ बनाओ और उसकी खुशबू मेरे तक पहुँच रही है उसनू मैं इंजॉय करांगी तो फिलहाल प्रोग्राम होम स्वीट होम का लास्ट वाला गीत अरिजीत सिंह ते जसलीन रॉयल के वास्ते तुसी करो इंजॉय स्टे ट्यून्ड

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी।

0: कहेगा?
1: क्या कहेगा? अरे अरे अरे, मैं कुछ कह रही हूँ फिलहाल कि आज का दिन सिर्फ नूतन जी के नाल ही नहीं बल्कि एक और शख्स के नाल बहुत ही खास दिन है आज का देखो। और उन्हें तभी आज के दिन जन्म हुआ सी 4 जून नू। और मैं गल कर रही हूँ जी SPB या बालू, हुन तुसी कहोगे दोनों कौन ने? तो गल कर रही हूँ जी श्रीपति पंडित आराधुल्या बाला सुब्रमण्यम। हुन भी समझ नहीं आया, हुन समझाने SP बाला सुब्रमण्यम जी। सो कमाल दे गाया गायकी, आवाज़ ही ना दे, मैं कह रही हूँ आज दे टाइम से भी ना

मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन वो दिन रहेगा कोई होर और मुलाकात होगी थोड़े नाल बहुत जल्दी। फिलहाल आज दे दिन रिचा नु दियो जी इजाजत, जा रही हूं मैं और इंतजार कर रही हूं कि अगला दोस्त हुन कौन आ रहा है ना जी। सो उन्हें आप आवाज दे रहे हैं, एफएम रेनबो दे सफर चलता रहेगा, तुसी ट्यून इन रहना है 102.7 एफएम रेनबो दे नाल, स्टे ट्यून्ड विद एफएम रेनबो, दिल से दिल तक ते प्रोग्राम मिडे मेलोडीज दा। बिल्कुल लास्ट वाला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम ते लता मंगेशकर दी आवाज च, स्टे ट्यून्ड।

0: चिंता ना कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया, पलां च तेरे वीरा तो कोहा दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते घर बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुनदे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बात सब कुछ फुला देवे।

एक लिखत आई है, लिखत भेजी है सानू विनोद संधु जाडला टाउन ते। लिखा है कि मैं जद भी झात मारदा हाँ कोई अद्धा कु दहाका पछा नू, वेख अज दे हालात हौली हौली दिल बहिंदा जांदा ठा नू। नगनता जिहड़ी कदे जतरावली तक सीमित सी, पलीत कर गई अज घरां पिंडां ते ग्रां नू। मापिया की कदर ना कोई, धियां पैणा सुरक्षित ना। 10,000 मोड़न बदले कतल पए होवन, पता नहीं कदों लुट्ठां खोहां लुकणगियां। ते जद अज भी झात मारा तां देखदा हाँ पछां नू। जे कोई तुहानू कदे कोई गल कह देना कि कहिंदे कि सजना दिल ते नहीं लाईदा, जिहनू असीं बहुत ज़्यादा डूंघा प्यार करदे हुंने आ, उहदियां गल्लां नू कदे भी डूंघा दिल तक नहीं लाईदा। कहिंदे कि सजना दिल ते लाईदा नहीं, मन विच रौला पाईदा नहीं, ही अखियां दे हंजू हीरे हीरे इंज गवाईदा नहीं। कोस के किस्मत लाउने बाजी, इंज किस्मत अजमाईदा नहीं। गूंगे बहरे लोकां दे विच सच दा ढोल वजाईदा नहीं। सजना दिल ते एवें इदां लाईदा नहीं। ते जदों बंदा दिल ते गल्लां लाउणा छड्ड जांदा है ते फिर उह जीणा शुरू करदा है। ते जीने लगा हूँ कैसे लगा हूँ, यह गाना बयान कर रहा आतिफ असलम ते श्रेया घोषाल दी आवाज़ दे विच कि जीने लगा हूँ।

एक लिखत आई है व्हाट्सएप पे कि बेशकीमती सी वह पल जो तेरे नाल बिताए सी, अपनिया नू छड़ के तेरी दहलीज ते आए सी। अज दुख महसूस हुंदा है उस कीती गलती दा, किंज गैरां लई असी अपने रवाए सी। ये लिखत भेजी है सानू गगनप्रीत कौर टांडा तो। बिरहा दा सुल्तान शिव कुमार, उन्हां दी लिखी एक रचना है कि तू विदा होयो मेरे दिल ते उदासी छा गई, पीड़ दिल दी बूंद बन के अखियां दे विच आ गई, दूर तक मेरी नज़र तेरी पैड़ चुमदी रही, फिर तेरी पैड़ राहां दी ओ मिट्टी खा गई, तुरन तो पहला सी तेरे जोबन ते बहार, तुरन पिछों वेख्या कि हर कली कुमला गई, उस दिन पिछों असा ना बोलिया ते ना वेख्या, ए जबां खामोश हो गई ते नज़र पथरा गई, इश्क नू सुगात जेड़ी पैड़ से तू दे गयो, अंत ओयो पीड़ शिव नू खांदी खांदी खा गई। प्ले करांगी श्रेया घोषाल की आवाज़ दे विच ओर अंग्रेज़ गाना भाग मिलखा भाग मूवी दे विचों, जिस दे विच एक बहुत सोहनी लव कैमिस्ट्री दिखाई गई सी। तो उस तो बाद गल करांगे कि जो दिल टुटदा उहदी आवाज़ आउंदी है या फिर टुकड़े टुकड़े होण तो बाद भी जोड़न का मन नहीं करता। तो जेकर तुसी भी इस दे बारे कोई गल करनी चाहते हो, नंबर नोट कर लो व्हाट्सएप का 9855 10 10 27, भेज दो इस नंबर के उत्ते FM रेनबो जलंधर व्हाट्सएप के नाम के उत्ते। तो इस तरीके दे नाल मेरे नाल बने रहो आज राजू दे नाल ठीक 3 बजे तक दिल आज शायर है प्रोग्राम।

0: एक जमाने विच हुकम सिंह नू उसदे घर वाले कुड़कुड़ दास बुलांदे सन क्योंकि लाइट पखे चलदे देखदे ही ओ सारेयां ते चिकन लगदे सन।
1: ओ रामू ए पखा क्यों चलदा छड़ता, बिजली दा बिल की तेरा बापू भरेगा।
0: पर अज सारे उन्हां नू प्यारा सिंह कहंदे ने क्योंकि जदों तो उन्होंने सोलर पैनल लगाया है उदों तो मीटर दी सुई भी शांति नाल सौंदी है। अते हुकम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in ते।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ओए होए ओए गल नहीं बात नहीं देनी रात नहीं एवे रोला पाया सिर दुखड़ा लाया लगा यार एफएम रेनबो 102.7 मेगाहर्ट्ज़। हाय हाय हाय हाय हाय आ गल बई सवाल आ गया उड़ाते तोते पाते।

कुछ गाने जिहड़े कि बहुत कुछ बयान कर जांदे ने। पहला गाना सुनिया आपां जिया धड़क धड़क जाए, जदों किसे नूं याद कीता जांदा है ते हो जांदा आ दिल ते दिमाग दी जेकर सुनन चाहिए। दिमाग कहिंदा आ कि आ गल सही आ, दिल कहिंदा है कि नहीं, जे आ डिसीजन गलत लै लिया तां फिर सारी उम्र पछताएगा। पर दिमाग कहिंदा है कि लाइफ च प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी आ। दिल ते दिमाग दे विच्चों जेकर दिल जितदा आ फिर दिमाग तुहानूं बार बार गिल्ट महसूस करवाएगा, ते जेकर दिमाग जित जांदा आ फिर दिल तुहानूं सारी उम्र हौल दे के जाएगा। लिखत आई है कि मेन बाजार पिंड चौके जिला बठिंडा, बसंत सिंह टेलर ने लिखा है। बेटा उन्हां दा लवदीप सिंह जस्सल के, हर पल तेरी याद च गुजरे हैं अखां विच तस्वीर तेरी, जद दी रूह तेरे नाल लाई बदल गई तकदीर मेरी, तेरे दर ते मैं कैदी होवां होवे हत्थां विच जंजीर तेरी, जस्सल दी तां दुआ इही है जद तक जीवां तेरे नाल जीवां, नाम तेरे बुल्लां ते होवे जदों भी होवे अखीर मेरी। अखीर दी गल इन्होंने कर ही दिती है, तो अखीर दे उत्ते भी लिखा सी कि खफा खफा रहने आ जिंदगी तो, तू मना लैंदा तां तेरा की जांदा सी, सानू चलिया वांग शिकायतां करदिआं नूं तू गल नाल ला लैंदा तां तेरा की जांदा सी, दुखां विच ही जम्मे ते दुखां विच ही वड्डे होए आ, तू थोड़ा जिहा हसा लैंदा तां तेरा की जांदा सी, खैर जिथे भी रहे तू खुश रहे, साड़ी जिंदगी सवर जांदी जे जिंदगी साढ़े नाल बिता लैंदा तां तेरा की जांदा सी।

चार सत्रां आईयां व्हाट्सएप दे उत्ते। लिखण वाले दा नाम है कुलविंदर टेलर, पिंड कंडोला तों, कि साडा भावें कख ना रख पर सानू अपने तो वख ना रख। मैं दिल देना सी दे

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है वर्टिगो, सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, यानी चक्कर आने की समस्या, लक्षण, कारण और इलाज। दोस्तों वर्टिगो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को महसूस होता है जैसे वे खुद या उसके आसपास की चीज़ें तेजी से घूम रही हों और आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। तो क्या है ये परेशानी और क्या है इसका इलाज, इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ढिकाव।

0: जो हैं न्यूरोसाइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर विनीत गुप्ता जो हैं ENT स्पेशलिस्ट. डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर विनीत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम
2: जी. नमस्कार जी.
0: श्रोताओं, इस विषय से जुड़े आपके पास भी हैं सवाल तो हमें करिए कॉल, जिसके लिए हमारे नंबर्स हैं 01123421080 और 2342-1082. आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए हमारा नंबर है 9868107070. डॉक्टर विकास, सबसे पहला सवाल है कि वर्टिगो है क्या और ये कितने प्रकार का है?
2: जी देखिए, वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, आम भाषा में बोलते हैं. और चक्कर आने का मतलब ये कि आपका हेड जो है वो मूव नहीं कर रहा है, आप मूव नहीं कर रहे हैं
0: जी,
2: लेकिन आपको ऐसी सेंसेशन होती है कि चारों तरफ की दुनिया मूव कर रही है, यानी कि आपके दिमाग में चक्कर है, एक्चुअल चक्कर नहीं है
0: जी.
2: तो वर्टिगो देखिए प्राइमरीली दो तरह का होता है, पेरिफेरल जो कि डॉक्टर साहब बताएंगे क्योंकि वो कान से रिलेटेड होता है. सेंट्रल जो वर्टिगो है वो अक्सर देखिए कॉन्टिन्यूस होता है, इंटरमिटेंट कम होता है, और वो लो इंटेंसिटी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन काफ़ी बॉदरसम होता है
0: जी.
2: तो जो सेंट्रल कॉज हैं वो सीरियस होते हैं अक्सर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्ट्रोक आ गया, यानी कि लकवा मार गया, तो स्पेशली जो पोस्टीरियर साइड का स्ट्रोक होता है जिसको हम पोस्टीरियर सेरिब्रल सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं, तो वो एक सीरियस किस्म का जिसको बोलें कॉज है. या इसके अलावा देखिए माइग्रेन है, पोस्टीरियर माइग्रेन या वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं, वो एक कॉज हो सकता है
0: जी.
2: या फिर हेड इंजरी के बाद भी चक्कर आ सकते हैं. तो मोटे तौर पे गए और भी कॉज हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सेंट्रल कॉज अक्सर सीरियस हो सकते हैं. पेरिफेरल कॉज के बारे में डॉक्टर
0: विनीत.
1: जी मैम. मैम पेरिफेरल कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस नहीं होते हैं, बट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो थोड़ा सा खराब करके रखते हैं, क्योंकि पेशेंट अच्छे से अपना रूटीन वर्क नहीं कर पा रहा है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है. मेनली जो अपने पेरिफेरल कॉजेज होते हैं वो ईयर से रिलेटेड होते हैं. ईयर में जैसे BP वो पोजिशन चेंज करेगा पेशेंट, अपनी टर्न हेड करेगा या करवट लेगा, उसको चक्कर आएगा सेंसेशन. फिर और भी कॉजेज होते हैं काफ़ी
0: जी, इस पर बात करेंगे हम. पहले सुन लेते हैं गीत, और गीत पर गीत सुनने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से हमारा नंबर बता दूं. हमारा नंबर है 2342-1080 और 2342-1082. व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए 9868107070.

0: श्रोताओं, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या की, और इस पर हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विकास ढिकव, जो है न्यूरो साइंटिस्ट, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत गुप्ता, जो है ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, बात अगर वर्टिगो के लक्षण और कारण की करें तो कौन से वो लक्षण हैं जिनसे कोई ये जान सकता है कि वो इस समस्या से प्रभावित है, और वर्टिगो होने के कारणों में कौन से कारण शामिल हैं?
1: जी, देखिए, अक्सर ये चक्कर से ही शुरू होता है और ये अनआइडेंटिफाइबल होता है कि
0: जी
1: चक्कर की वजह क्या है, कि गर्दन में चोट लगी है या सिर में चोट लगी है, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, या फिर आपको लकवा आया है,
0: जी,
1: या कोई आपको एक क्रॉनिक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है सॉरी, तो कारण जो है इसका एकदम से पता नहीं चलता है। और अक्सर देखिए डॉक्टर को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है ये पता करने के लिए कि ये पेरिफेरल कॉज है, यानी कि कान से रिलेटेड है। अक्सर 80% कॉज कान से रिलेटेड होते हैं, या फिर ये ब्रेन से रिलेटेड है।
0: जी
1: लेकिन ब्रेन की काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें जो चक्कर है वो एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे सामने आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं,
0: जी
1: माइग्रेन मतलब सिर दर्द। अक्सर सिर दर्द से ही आप माइग्रेन को आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन इसमें सिर दर्द नहीं होता वेस्टिबुलर माइग्रेन में, इसमें चक्कर ही आते हैं। तो
0: जी
1: चक्कर से शुरू होता है।
0: जी
1: कभी कभी देखिए बीमारी इतनी सीरियस होती है कि दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर हो, तो उसकी भी मैनिफेस्टेशन चक्कर से शुरू होती है। लेकिन हम अक्सर देखिए एज अ न्यूरोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि अगर मान लिया चक्कर के साथ साथ हेयरिंग लॉस है, तो आप पहले कान का जो सिस्टम है उसको चेक करवाइए, यानी कि हियरिंग अपरेटस है उसको चेक करवाइए, ऑडियोमेट्री करवाइए, और बाकी टेस्ट होते हैं सुनने की जांच जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद में ही बाकी जो कॉजेज हैं उनके ऊपर फोकस होता है। लेकिन ये तो हुआ देखिए कारण की बात, जो लक्षण एक तो हुआ चक्कर आना, फिर आपको दो दिख सकते हैं, डिप्लोपिया, या निगलने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, या आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, या बेहोशी जैसी हालत हो सकती है, या आप लड़खड़ा सकते हैं, या आपके हाथ और पाँव में, या हाथ पाँव एक साथ एक साइड का कमजोरी आ सकती है, जो कि स्ट्रोक का लक्षण होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल जिसको सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं, और एकदम से जी मिचलाता है या बहुत ज़्यादा उल्टी

0: आती है, लेकिन जो एक चीज़ कंसिस्टेंट है वो स्पिनिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पेरिफेरल कॉज है उनके बारे में डॉक्टर विनीत
1: जी
0: बता
1: डॉक्टर
0: सकते हैं।
1: विनीत।
2: जैसा सर ने बताया सेंट्रल कॉज के बारे में, जो दिमाग की वजह से होते हैं चक्कर, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे सर ने बताया लड़खड़ाएगा आदमी, चल नहीं
1: जी जी
2: पाएगा
1: जी
2: अच्छे से, बट जो पेरिफेरल वर्टिगो होता है, जो हमारे कान से रिलेटेड होता है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो
1: जी
2: उसी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड है या
1: जी
2: कान से रिलेटेड है।
1: जी जी
2: कान
1: जी
2: से रिलेटेड होता है तो यूजली जो है उसमें चक्कर होता है, चक्कर के साथ पेशेंट ये बोलेगा कि मैं अपनी करवट बदल रहा हूँ, पोस्चर चेंज कर रहा हूँ तो मुझे चक्कर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम बीपी वीवी। और फिर कान की अदर
1: सर ये
2: प्रॉब्लम्स,
1: बीपी वीबी को अगर आप थोड़ा
2: बेनाइन
1: जी
2: पैराक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो बोलते हैं
1: जी
2: हम लोग
1: जी
2: इसको,
1: जी
2: तो उसका मीनिंग ही यही है कि पोजीशन चेंज किया आपने, करवट ली या आपने टर्न करा किसी साइड में हेड और आपको चक्कर आया, तो ये इसका इनिशियल साइन होता है कि पेशेंट
1: अच्छा
2: इससे जज कर सकता है कि हाँ मुझे कान की
1: ऐसा हो रहा है
2: प्रॉब्लम है,
1: अगर तो
2: तो हम
1: उसको
2: मुझे कान को ही दिखाना चाहिए
1: ईएनटी स्पेशलिस्ट को
2: और
1: दिखाने
2: हियरिंग
1: के लिए।
2: डिक्रीज हो रही है
1: जी
2: तो मेरे को ईएनटी को पहले दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ एक न्यूरोलॉजिकल कॉज भी है, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस
1: जी
2: और वेस्टिबुलर लेबरिंथाइटिस, मतलब कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया जो हमारा इनर ईयर है उसमें, तो उसमें हमारी हियरिंग भी डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से हो रहा है, तो वो शॉर्ट शॉर्ट एकदम कान की प्रॉब्लम है।
1: जी सर ये जो आपने बताया हियरिंग डिक्रीज होना, ये एक कान में होता है या दोनों में या कभी कभार एक में भी हो
2: रेयर,
1: होता
2: मोस्टली 1 ईयर का रहता है
1: है।
2: लेबरिंथाइटिस, बहुत बहुत रेयरली है कि वो दोनों ईयर्स को इन्वॉल्व
1: सर
2: करें।
1: इसमें क्या दर्द भी रहता है
2: नहीं
1: कान
2: दर्द नहीं
1: में?
2: होगा इसमें, चक्कर और
1: हाँ
2: उल्टी
1: कान में
2: वॉमिटिंग
1: दर्द नहीं
2: नहीं,
1: होगा।
2: कान में
1: जी
2: दर्द नहीं होगा। कान में दर्द हो रहा है तो वो एक्यूट इन्फेक्टिव स्टेज होगा,
1: जी
2: मास्टॉइडाइटिस हो रहा है और वो इन्फेक्शन बोन में है, उससे पेन हो रहा है, और साथ
1: जी
2: के साथ हमारे इनर ईयर जो हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, तो
1: जी
2: तभी हमारे को पेन के साथ ये प्रेजेंट
1: जी तो
2: करेगा।
1: सर ये क्या वर्टिगो जो बताया आपने ये कि गंभीर है समस्या?
2: जो पेरिफेरल कॉजेज हैं
1: जी
2: उसमें गंभीरता कम है, मेन ये अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को
1: जी
2: हैम्पर करता है, जैसे किसी को रूटीन वर्क करने में प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान के चलिए आप काम कर रहे हैं कुछ भी, झाड़ू लगा रहे हैं झुक
1: जी
2: करके खड़े हुए तो आपको चक्कर आ रहा है,
1: जी
2: या आपने ऊपर से कोई सामान उठाना है, नेक ऊपर करा एक्सटेंड किया फिर आपने नीचे सर किया अपना तो चक्कर आने
1: सिर
2: लग गया,
1: घूमने लगा
2: या
1: चक्कर
2: आपने
1: आने लगा।
2: करवट अपना
1: जी
2: बॉडी टर्न करा राइट साइड या लेफ्ट
1: पोजीशन
2: साइड,
1: चेंज किए।
2: पोजीशन चेंज किया चक्कर आ रहा है,
1: जी
2: तो ये ईयर का साइन है कि ईयर का इन्वॉल्वमेंट है
1: जी
2: इसमें।
1: सर इससे एक को रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन
2: बिल्कुल
1: पे ले लेते हैं
2: जी
1: उनका
2: जी
1: कॉल।
2: जी
1: हेलो
2: नमस्कार मैडम,
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार,
1: जी
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: हाँ जी पूछिए सवाल।
2: मेरे को डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जो ये चक्कर फिजिकल, ये मानसिक, ये भावनात्मक रूप से भी आते हैं क्या चक्कर? जैसे हमारी बिटिया को जैसे कभी कोई शादी के फंक्शन में जहाँ भीड़ होती है, या जैसे कभी
1: जी
2: कभी बार बार तो नहीं होता है, जैसे कभी पूजा करते समय या कभी ऐसा माहौल बन गया दुख भरा
1: जी जी
2: परिवार
1: जी
2: में,
1: जी
2: तो उसमें उसको बेहोशी चक्कर जैसा आ जाता है, मतलब ये महीने में, मतलब बार बार नहीं होता, कभी कभी बार थोड़ी देर में ठीक हो जाता है,
1: जी
2: जैसे कभी शादी फंक्शन में या पूजा पाठ करते
1: समझ
2: समय,
1: गए
2: कहीं
1: समझ गए। रघुवीर जी देखिए
2: मंदिर में
1: दो
2: जाके, मंदिर में हो या घर में, ऐसी दुख दर्द हो
1: जी
2: कभी,
1: जी
2: झगड़ा झगड़ा ऐसा
1: जी समझ गए
2: टेंडेंस
1: समझ
2: कभी
1: गए।
2: ऐसे ना।
1: जी डॉक्टर
2: दो
1: साहब आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, सुनिए।
0: जी देखिए दो सिचुएशन है, एक तो ये है कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जो क्रॉनिक अनअटेंडेड और मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रेस है उसकी वजह से इटसेल्फ चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से एंग्जाइटी होती है और एंग्जाइटी से स्पिनिंग सेंसेशन आ सकती है, एक बात। लेकिन अक्सर देखिए न्यूरोलॉजिकल प्रैक्टिस में ये होता है कि किसी को मिर्गी की बीमारी है और आके मरीज ये बोलते हैं कि हमें चक्कर आते हैं, या रिश्तेदार बोलते हैं इनको चक्कर आते हैं, और चक्कर से उनका मतलब होता है दौरा आना। तो दौरा आना इज़ अनदर सीरियस प्रॉब्लम, कि वो बिल्कुल अलग तकलीफ है, उसको मिर्गी की तकलीफ बोलते हैं। उसमें क्या है कि चक्कर खा के मरीज गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और एक किस्म से बोलें कि टॉयलेट निकल जाता है, या
1: जी
0: फिर जो दांते हैं एकदम से बिछ जाती हैं, जीभ कट जाती है, पसीना आता है, आंखें फिर जाती हैं, तो वो बीमारी बिल्कुल अलग है। तो उसको हम वर्टिगो से कंफ्यूज ना करें, वर्टिगो तो एक अलग किस्म की तकलीफ है। हालांकि जो एपिलेप्सी के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं जैसे फेनिटोइन है फॉर एग्जांपल, इसकी अगर डोज हाई हो जाए, कार्बामाज़ेपिन की डोज अगर हाई हो जाए तो भी वर्टिगो की सेंसेशन हो सकती है, वो तकलीफ बिल्कुल अलग है।
1: जी
0: तो जहाँ तक इन्होंने अपनी बिटिया की बात की है तो हो सकता है बिटिया को इन दोनों में से एक हो या दोनों में से कुछ भी ना हो, तो क्योंकि

0: तो देखिए इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्योंकि सिम्टम है तो इनको इवैल्यूएशन करवाना चाहिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट को या ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, तो इट लुक्स लाइक कि कोई अंडरलाइंग जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो इसके लिए साइकाइट्रिस्ट से भी बात कर सकते हैं।
1: जी, उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ना कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारा आज का विषय। हमारा विषय है वर्टिगो, सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, यानी चक्कर आने की समस्या, लक्षण, कारण और इलाज। और इस पर हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास टिकव और डॉक्टर विनीत गुप्ता। और आपको अगर इसी समस्या से कोई जुड़े आपके भी हैं सवाल, तो आप हमें कॉल करिए इन नंबर्स पर जो हैं 2342-1080 और 2342-1082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए, जो है 9868107070। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी
0: जी,
1: कि वर्टिगो ये कितनी गंभीर समस्या है?
0: देखिए, सेंट्रल वर्टिगो तो अक्सर गंभीर होती है, क्योंकि स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, ट्रॉमा है, हेड इंजरी है या नेक इंजरी है, व्हिप्लैश इंजरी जिसको बोलते हैं, डैशबोर्ड इंजरी, अक्सर एकदम से आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मारे किसी ने बहुत तेजी से और सिर जो है डैशबोर्ड पे लगा हुआ, व्हिप्लैश इंजरी हो सकती है, तो ये गंभीर किस्म की वर्टिगो होती है। लेकिन कुछ ऐसी वर्टिगो भी होती हैं जो कम गंभीर होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टिबुलर माइग्रेन है, तो वो उसको हम गंभीर माइग्रेन नहीं बोलते, लेकिन माइग्रेन की जो आम दवाइयाँ हैं जैसे सोमा ट्रिप्टान, राइजा ट्रिप्टान, तो वो वेस्टिबुलर माइग्रेन में काम नहीं करती हैं, तो उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगता है कि बीमारी और उसके कारण तो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मरीज को देखिए इमीडिएटली क्या करना चाहिए, ये एक
1: जी,
0: सवाल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे।
1: महत्वपूर्ण जी।
0: तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप बैठ जाइए, आप चलिए मत, आप सीढ़ी से अगर उतर रहे हैं तो आपको बैठना परम आवश्यक है, या अगर आपको ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो आप लेट जाइए, उस करवट लेटिए जहाँ पे आपको स्पिनिंग सेंसेशन कम से कम महसूस हो रही है। शाम को आप कहीं जा रहे हैं, अंधेरा है, तो आप डबली केयरफुल रहिए, आप टकरा सकते हैं, अनस्टडी हो सकते हैं,
1: जी
0: या अगर आप हाइट पे हैं, पहाड़ों पे हैं, तो आपको पहाड़ों की वजह से भी एक्रोफोबिया की वजह से वर्टिगो सेंसेशन हो सकती है, या फिर अगर आपको वर्टिगो है तो वो एक्सेंचुएट हो सकती है। तो इसके अलावा अगर आपको बैलेंस में दिक्कत है, आप 60 से ऊपर हैं, तो आप छड़ी लेके चल सकते हैं,
1: जी
0: इट मे नॉट साउंड ग्लैमरस, लेकिन छड़ी लेना आपके फायदे में ही है, आप गिरेंगे नहीं।
1: जी
0: एक होता है देखिए एक्चुअल गिरना, और एक है गिरने का डर होना। तो गिरने का जो डर है, इस पे तो डॉक्टर विनीत थोड़ा सा आगे बताएंगे वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन के बारे में,
1: जी
0: लेकिन गिरने का जो डर है ये भी बड़ा एक कॉमन फिनोमेना है। इसमें क्या है कि आप शादी में, ब्याह में, बारात में, मंदिर में जाने से डरते हैं, आपको लगता है आप अनस्टडी हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे, तो ये जो सेंसेशन है इसके साथ जिया जा सकता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर जरूर करती है, लेकिन ब्रेन और आई का कोऑर्डिनेशन एक किस्म से दोबारा किया जा सकता है, ब्रेन को रीट्रेन किया जा सकता है। तो जो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं ये आप जरूर रखिए, और
1: जी
0: इसके साथ साथ स्पेशली देखिए गर्मी है अभी बहुत ज़्यादा, जून का महीना चल रहा है, पानी खूब पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम, नमक जो बोलेंगे सलाद पे कम से कम, चीनी कम से कम, क्योंकि नमक और चीनी से कान का प्रेशर बढ़ता है, तो पेरिफेरल वर्टिगो बढ़ सकता है। और जिसको बोलते हैं जिमिंग, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो जिमिंग करते हैं और उसके बाद भी कुछ लोगों को वर्टिगो हो जाते हैं, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो उसकी वजह से भी वर्टिगो हो सकता है। तो इसका भी ख्याल रखिए कि अगर आप जिमिंग कर रहे हैं तो अंडर एक अच्छे ट्रेनर के अंडर ही आप करें, ऐसे नहीं कि मनमाने आज 50 किलो वजन उठा लिया, कल 25, फिर 75 किलो उठाने की कोशिश की, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो
1: जी
0: सकती है।
1: डॉक्टर विनीत, इसी पर मैं आपकी
0: जी
1: भी वो करेंगे आपसे बात, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है कॉल लाइन पे, उनका
0: जी
1: कॉल ले लेते
0: बिल्कुल।
1: हैं। हेलो हेलो,
2: नमस्ते मैम। नमस्ते मैम।
1: नमस्कार
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 44 वर्ष है, मेरे
3: जी
2: सर में भारीपन रहता है,
3: जी
2: गर्दन अकड़ी रहती है, कमर में भी दर्द रहता है और मेरे कान में छेद है, तो मैं कारण पूछना चाहता हूँ, ये कान में जो पर्दे में छेद है इसके कारण है या कोई और है? चक्कर भी आता है कभी कभी।
3: कान में पर्दे के छेद की वजह से चक्कर आना बहुत मुश्किल चीज़ है, उसके साथ कुछ और, या फिर तो आपको बीपी बीबी का प्रॉब्लम हो, कान में जो हमारी कैनाल है उसमें पार्टिकल फॉर्मेशन हो गया हो, या हमारी जो कान की बैलेंसिंग कैनाल हैं उसमें कुछ माइनर छेद, साइनस टाइप का फिस्टुला फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से चक्कर आ सकता है, बट वो रेयर चीज़ है। केवल छेद की वजह से चक्कर आना बड़ा मुश्किल चीज़ है, छेद की वजह से नहीं होगा।

0: होगा तो या फिर तो अंदर पार्टिकल, या फिर वो आपके जो गर्दन जकड़ी हुई है और जो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है उसकी वजह से चक्कर आ सकता है, और हो सकता है आपको माइग्रेन की भी शिकायत हो जिसकी वजह से सर में दर्द और उसमें नेक में आपकी जो गर्दन में जकड़न है वो हो रही हो और उसके साथ में आपको जो है चक्कर आ रहा हो।
1: जी जी जी जी जी ये हो सकता है कि इनको होलोक्रेनियल हेडेक बता रहे हैं, नेक की प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से रेफर पेन हो इनको।
2: जी
3: जी
2: डॉक्टर साहब, अभी जैसे डॉक्टर विकास ने बताया कि वर्टिगो की स्थिति क्या है, आप क्या कहेंगे इस पर?
0: जी मैम, बेसिकली
2: कितनी गंभीर स्थिति है ये?
0: जो पेरिफेरल है
2: जी
0: उसमें गंभीरता नहीं है, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग उस वे में कि जैसे सर ने पहले ही बताया कि आप ड्राइव कर रहे हो और आपको चक्कर आ गया
2: जी,
0: तो लाइफ थ्रेटनिंग है क्योंकि आप या स्टेयर से या माउंटेन से नीचे आ रहे हैं, तो वो उन सारी कंडीशन में थ्रेटनिंग है। जो सेंट्रल कॉजेज होते हैं जो ब्रेन की वजह से, वो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग है क्योंकि उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं चल रहा, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। वो अगर चीज़ सेफ है, ब्रेन हमारा ठीक है, नॉर्मल है और पेरिफेरल हो रहा है कान की वजह से, तो ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है।
2: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो
4: मैम, नमस्कार।
2: नमस्कार
4: मैम, मेरा नाम दीपांशु है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: सर, मैं डेली प्रोग्राम सुनता हूँ बट आज का ये प्रोग्राम मेरे को मतलब मुझे कॉल करनी पड़ी आपको।
2: जी जी
4: मैडम, मेरे फादर हैं, ही इज अराउंड 66 इयर्स ओल्ड
2: जी।
4: उनको 4 साल पहले बेल पाल्सी का अटैक आया था
2: जी,
4: एंड वो रिकवर कर गए थे अच्छे से, और 2 साल पहले उनको वर्टिगो भी आइडेंटिफाई हुआ, यही बीपीपीबी वाला जो है इशू।
2: जी जी,
4: तो क्या डॉक्टर साहब ये चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं या उस बेल पाल्सी की वजह से ये चीज ट्रिगर हुई है?
0: नहीं, ये दोनों चीजें आपस में, तो क्योंकि वो 4 साल पहले हुआ और ये 2 साल पहले हुआ है, तो ये आपस में इंटर रिलेटेड तो है नहीं। अगर बेल्स पेल्सी की वजह से होता तो वो न्यूरोलॉजिकल कॉज होता, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, वो उसी टाइम पे प्रेसिपिटेट करता 4 साल पहले। अभी 2 साल पहले हो रहा है तो आपको डिटेल टेस्टिंग, इसके लिए एक वीडियो निस्टेक्मोग्राफी, एक टेस्ट कराना चाहिए उनका, उससे रूल आउट करना चाहिए कि उनके कान की वजह से कैनाल में पार्टिकल फॉर्मेशन की वजह से चक्कर आ रहा है, और अगर MRI ब्रेन हो चुका है वो नॉर्मल है, तो मेरे ख्याल में आप नियर बाई अपने ENT डॉक्टर जो कि वर्टिगो के स्पेशलिस्ट हों उनसे वीडियो निस्टेक्मोग्राफी करवाएं और उससे एक बारी रूल आउट करवाएं, क्योंकि उससे हम कई बारी सेंट्रल कॉज भी रूल आउट कर लेते हैं।
4: तो सारे टेस्ट करवा के वो सब नॉर्मल आते हैं, इसीलिए
0: नहीं नहीं, ये वीडियो निस्टेक्मोग्राफी आपको टेस्ट कराना है।
4: ठीक है, वीडियो स्टेनोग्राफी,
0: वीडियो निस्टेक्मोग्राफी VNG करके बोलते हैं, आप ये टेस्ट कराइए, और इसके लिए पहले आपको 48 घंटे पहले चक्कर की सारी दवा बंद करके तब जाएं।
2: जी
4: ठीक है,
2: बहुत अहम बात बताई आपने। जी डॉक्टर, आज का हमारा कितना इम्पोर्टेंट विषय है, और इसी पर देखिए लगातार कॉल आ रहे हैं। हमें एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल भी। हेलो।
5: हेलो
2: जी,
5: नमस्कार जी।
2: नमस्कार
5: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
5: सर, मैं लोधी रोड नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे को ना कंधे में, लेफ्ट कंधे में ज्यादा दर्द होता है और गर्दन में भी
2: जी।
5: और मैंने ब्रेन का भी MRI कराया था, वो भी नॉर्मल था, और मुझे चक्कर भी आते रहते हैं। ऐसा लगता है कई बार मैं कि गिरने लगता हूँ, गिरने लग जाता। डॉक्टर साहब ने बताया कि दर्द बैठ जाता है, तो दर्द मुझे रेगुलर लेफ्ट कंधे में बहुत रहता है। स्पाइन का भी मैंने MRI कराया, वो भी ठीक आया था। तो एक तो ये बता दीजिए, दूसरा डॉक्टर विकास कहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा ये मैं सुन नहीं पाया था।
3: जी जी
2: जी
3: जी जी जी, मैं सरकारी सेवा में हूँ, लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि आपको लेफ्ट कंधे में दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है?
5: मेरी उम्र जी 53
3: है। 53 में अगर कंधे में, लेफ्ट कंधे में दर्द रहता है तो आप एक बार शुगर की जांच कराइए, क्योंकि शुगर नॉर्मल है आपकी, तो आपने अगर कोई वजन उठाया हो सकता उसकी वजह से रहता हो, लेकिन नेक में भी आपने बताया कि दिक्कत रहती है, तो जो
5: नेक में भी लेफ्ट साइड ही दर्द रहता है ज्यादा।
3: समझ गए, तो पोस्चर से रिलेटेड हो सकता है। कोई गर्दन में आपको चोट तो नहीं लगी थी?
5: नहीं, चोट भी नहीं, और मैंने वजन वगैरह कुछ नहीं उठाया, ये तो लगभग 5-6 महीने हो गए,
3: समझ
5: काफी देर होगी, कभी यहाँ भी खाता रहता हूँ।
3: कभी कभी क्या है, पोस्चरल होता है और ये स्लो डिजेनरेशन होता है, तो उसकी वजह से हो जाता है, या कभी कभी जैसे 50 के बाद में ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि कोई नस दबी हुई हो हल्की सी। तो आपने MRI ब्रेन तो करा लिया, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन स्क्रीनिंग भी कराई जा सकती थी, लेकिन आपके लिए उचित ये रहेगा कि आप एक सॉफ्ट कॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं।

0: से हॉस्पिटल में बैठते हैं सरकारी में।
1: जी, मैं पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में था, अभी भारत सरकार में हूँ। तो आप तो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके और आप अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य तकलीफ़ है। लेकिन एक बात बिल्कुल ख़ास है कि आपको, आप बता रहे हैं कि काफ़ी समय से ये दिक्कत है, तो
0: मैं
1: इसको
0: ज्यादा देर
1: इस
0: खड़े भी नहीं हो पाता हूँ जी, मुझे
1: मैं
0: ऐसा
1: समझ
0: लगता है कि
1: गया
0: मैं
1: आपकी बात। ये
0: बैठ
1: सर्वाइकोजेनिक
0: चलने वाला हूँ
1: वर्टिगो
0: फिर मैं
1: बोलते
0: खड़
1: हैं,
0: जाता
1: सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो की वजह से आपको ऐसा हो रहा है।
0: हूँ।
1: लेकिन आप जो रिहैब है वो तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, आपको जहाँ भी आपको लगे सीढ़ियाँ आप उतर रहे हैं तो आप रेलिंग पकड़ के उतरिए, नंबर एक। नंबर दो, अनइवन सरफेस पे केयरफुल रहिए। शाम को अगर अंधेरा है तो वहाँ पे डबली केयरफुल रहिए, आप
0: अकेले
1: गिर
0: मत
1: सकते।
0: निकले ये भी
1: अकेले अगर संभव हो तो आप किसी के साथ निकलें,
0: साथ।
1: बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको अपने वर्टिगो को मैनेज करना पड़ेगा।
0: सर
1: जी
0: बस
1: जी
0: एक लास्ट लास्ट डॉक्टर साहब, मुझे छोटी सी ये बात है, मैं मान लो मैं सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी जाऊं तो किस स्पेशलिस्ट को दिखाऊं, इसके क्या बीमारी से रिलेटेड
1: देखिए,
0: हो।
1: आपको पहले तो ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक्स को दिखाने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हो सकता है कोई आपको MR एंजियोग्राफी सजेस्ट करे, लेकिन आपका जो कॉज है वो वैस्कुलर लग नहीं रहा। तो नॉर्मली एंजियोग्राफी, MR एंजियोग्राफी हम वैस्कुलर कॉज को रूल आउट करने के लिए करते हैं। लेकिन ये भी होता है कि बहुत बार, देखिए, हार्ट में तकलीफ है लेकिन आपका जो वर्टिगो है वो नॉन कार्डिक कॉज की वजह से होता है, तो आप तो एक सरकारी अस्पताल में जाके इवेल्युएशन करवाइए तो पता
0: जी
1: चलेगा।
0: जी जी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। साथियों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, और इस पर हमारे साथ हैं हमारे दो विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ढिकव और डॉक्टर विनीत गुप्ता। डॉक्टर विनीत, अभी आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पोजिशनल वर्टिगो, उसको कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है?
2: बेसिकली मैडम, पेशेंट को बस इतना ही जज करना है जो पोजिशनल वर्टिगो होता है उसमें कि क्या उसको चक्कर हर कोई मूवमेंट कर रहा है, या हमारे जो है पोजीशन चेंज कर रहा है, बेड पे लेट रहा है या लेट के बैठ रहा है या करवट बदल रहा है, उस टाइम पे चक्कर आ रहे हैं या चक्कर बढ़ जा रहे हैं
1: जी।
2: तो ये पोजिशनल वर्टिगो होता है
1: जी।
2: ये मतलब सिंपल सा है, अगर इतना वो जज कर लेते हैं तो उनको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे कि ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं और बोलें कि मुझे ऐसा हो रहा है, पोजिशन चेंज करने पर हो रहा है, पोजिशनल वर्टिगो टाइप का हो सकता है। और इसके लिए फिर एक टेस्ट होता है,
1: मैं पूछने वाली थी कि इसके लिए टेस्ट कौन कौन से हैं?
2: जी, एक तो जो केबल डेफिनेटिव की पोजीशन चेंज करने पर है, उसके लिए हम वीडियो निस्टेगमोग्राफी एक टेस्ट रहता है, उसमें हम एक गॉगल पहनाते हैं, जो 3D गॉगल्स आजकल मॉल्स एरा में आपने देखे होंगे, उस टाइप का गॉगल सॉफ्टवेयर रहता है। TV पर हम उनके आईज के मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं।
1: अच्छा।
2: और उस आईज के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके हम ये जज करते हैं कि उसके एक कान में हमारे 3 बैलेंसिंग कैनाल होती हैं, तो हमारे किस ईयर में कौन सी बैलेंसिंग कैनाल में हमारा पार्टिकल पथरी बन गई है जो कि हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो असिस कर लिया हमने, तो उसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो कराते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है
1: जी।
2: इस पूरे प्रोसीजर में हार्डली 30-40 मिनट्स लगते हैं, और 30-40 मिनट्स में पेशेंट एकदम ठीक हो सकता है
1: जी। डॉक्टर विकास, अगर न्यूरो की बात करें तो आप कौन कौन से टेस्ट सजेस्ट करेंगे?
3: जी देखिए, डिपेंड करता है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि चक्कर से ये मैनिफेस्ट करता है, जैसे मान लें कोई 45 ईयर ओल्ड मेल चक्कर के साथ आता है, अदरवाइज फिट है, कार्डियक कोई कॉज नज़र नहीं आता है, उसको कोई इस्कीमिक इवेंट नहीं नज़र आती है, इस्कीमिक इवेंट से बोलें कि हाथ पांव में कोई कमज़ोरी नहीं आई है, तो फिर हम बोलते हैं कि कम से कम एक ब्रेन स्कैन करवाइए या MR एंजियोग्राफी, अगर हमें लगे कि ये इस्कीमिक इवेंट है, यानी कि ब्लड फ्लो ब्रेन का कम होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये दो बेसिक टेस्ट हैं। अगर ये दोनों नॉर्मल है तो हम बोलते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन की स्क्रीनिंग भी आप करा लें, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑस्टियोफाइट हो या फिर जिसको बोलें कि PIVD हो सर्वाइकल एरिया का, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो जब इसको बोलें कि ब्रेन एंड नेक नॉर्मल है
1: जी।
3: तो सेंट्रल कॉज ऑलमोस्ट रूल आउट हो जाता है, लेकिन फिर आते हैं फंक्शनल सेंट्रल कॉज, मतलब स्ट्रक्चरल सेंट्रल कॉज रूल आउट हो जाता है। जो फंक्शनल कॉज है उसमें बोले वेस्टिबुलर माइग्रेन एक कॉमन कॉज है, तो वेस्टिबुलर माइग्रेन अक्सर जैसे मैंने बताया चक्कर से मैनिफेस्ट करता है, उल्टी जी खराब होता है, और हेडेक जो है कभी कभी होता है, सिर में भारीपन रहता है, ज़्यादा नहीं होता है, इसका जो एसोसिएशन अक्सर हाइपरटेंशन के साथ होता है, तो BP चेक करें, और अगर मान लिया ब्लड प्रेशर है तो ECG और ECO दो बेसिक टेस्ट है वो साथ में करवा लेते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट की बैटरी है। इसके अलावा सबसे पहले तो देखिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि ये कॉज जो है ये सेंट्रल है या पेरिफेरल है। तो अगर सेंट्रल कॉज है तो कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं सेंट्रल कॉज के, कि एक तो वो एपिसोडिक नहीं होता है, वो जनरली मरीज खुद बोलता है कॉन्टिन्यूस होता है, नहीं तो जो पेरिफेरल वर्टिगो होता है वो कुछ सेकेंड्स या मिनट तक होता है, उसके बाद में ठीक हो जाता है और ये चलता ही रहता है। फिर दूसरा ये है कि अगर स्ट्रेस रिलेटेड हो तो अक्सर ऐसा होता है कि मरीज जो हैं कोई हाई प्रेशर ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे गार्ड हैं या आर्मी पर्सनल हैं तो, या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उनको कभी कभी ऐसा होता है। तो जब आपको

0: पता चल गया कि ये प्रोबेबल कॉज है, तो डिपेंडिंग अपॉन के पॉइंटर कहाँ है, क्लिनिकल पॉइंटर कहाँ है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करवा
1: जी
0: सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल।
0: जी,
1: हेलो हेलो, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है
0: जी
1: कॉल। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि वर्टिगो में क्या क्या जोखिम और जटिलताएं होती हैं, इसके
0: जी
1: बारे में आपने बताया। इसके साथ ही सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह ये डेली रूटीन को प्रभावित करता है कुछ लोगों को, क्योंकि वॉमिटिंग आना ऐसे टाइम में या वॉमिटिंग जैसा फील होना, क्या कहेंगे आप?
0: जी देखिए, जोखिम तो काफ़ी हो सकता है कि जो इस्कीमिक इवेंट्स हैं उसका पता नहीं चलता। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आज हो जाए, TI ये जिसको बोलते हैं, और कुछ समय के बाद स्ट्रोक हो जाए, तो इससे बड़ा जोखिम क्या होगा। स्ट्रोक तो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट है,
1: जी
0: एक बात। अच्छा, दूसरा ऐसा होता है जैसे पार्किंसोनिज्म एक बीमारी है, एक होता है पार्किंसन डिजीज़ और एक होता है पार्किंसोनिज्म, जो अक्सर ऐसा होता है कि आपने मानसिक बीमारी के लिए दवाई लंबे समय से खाई है, तो उसके बाद में रिजिडिटी हो गई या पिल रोलिंग ट्रेमर हो गए, जैसे बोलें कि आपकी आपकी इंडेक्स फिंगर और आपका थंब जो अपने आप हिलने लग गए, तो आप जो चाय की ट्रे सुबह सुबह लेके जाते हैं तो वो
1: हाथ
0: आपके
1: श्रिंक कर
0: हाथ
1: रहे हैं।
0: शेक करते हैं, तो फिर चलने में इनकोऑर्डिनेशन होता है। तो मेरे कहने का मतलब पार्किंसोनिज्म में भी ऐसा हो सकता है कि आपको चक्कर आए, तो आप ये देखिए कि ये अब सेंट्रल कॉज है लेकिन इसकी जो बोलें कि कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होगी। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो अक्सर यंग लोगों को होता है, टीनेज में होता है, 20 22 25 साल पे होता
1: इसका
0: है,
1: एज ग्रुप
0: तो
1: जो,
0: एज ग्रुप नॉर्मली वर्टिगो 40 के बाद होता है, लेकिन जो जिसको बोलें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस 20 और 40 के बीच में यंग लोगों की बीमारी है,
1: जी
0: और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो विटामिन डी कम होगा तो MS होने का खतरा थोड़ा बढ़ता है, तो ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें सेंट्रल जो कॉज है, ब्रेन से रिलेटेड जो कॉज होते हैं, क्योंकि वर्टिगो दो ही किस्म के होते हैं, कान से रिलेटेड या दिमाग से रिलेटेड, तो इसमें जो दिमाग से रिलेटेड है इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कि कॉज क्या हो सकता है और कॉज के हिसाब से ही फिर इलाज होगा। हम ये बोलते हैं, देखिए कुछ जो जनरल प्रिकॉशन जो पहले बता चुके हैं वो तो मरीज़ को सब सबको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले होता है मैनेजमेंट, कि आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि जो कि कान के सिग्नल जो ब्रेन में एक्सेसिवली जा रहे हैं या ब्रेन से जो सिग्नल कान की तरफ जाने चाहिए उसमें कोई अबनॉर्मैलिटी है तो उसको शांत किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, जो स्टडीनेस है पोस्चर की उसको एक किस्म से लाया जाए, तो दो चीज़ें तो करते हैं ताकि गिरने का खतरा कम हो जाए। और मरीज़ को बोलते हैं कि घर में बाथरूम में आप मैट लगा के रखिए, कि मैट अगर आप रखते हैं दोनों घर में और बाथरूम में, तो अगर आप गिर भी गए गलती से तो आपको हेड इंजरी नहीं होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है
0: जी
1: कॉल लाइन
0: जी
1: पे, ले लेते हैं कॉल। हेलो
2: लेकिन सबसे पहले
1: हेलो
2: आपको ऐसी दवाइयाँ,
1: हेलो, अगेन इनका कॉल
0: जी
1: कट
0: जी जी
1: गया
0: जी
1: है।
0: जी
1: डॉक्टर विनीत, आपसे जानना चाहूंगी कि
0: जी
1: कई केसेस में वर्टिगो अचानक से होता है, उसका क्या कारण होता है?
3: मैडम, देखिए अचानक से होने का एक हमारे ENT में होती है, ईयर से रिलेटेड कॉज होता है मीनियर्स डिसीज़।
1: जी
3: उसमें पेशेंट अचानक से चक्कर आएगा और गिर जाएगा। बस जो हमारी दो कंडीशंस हैं जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से काफ़ी मैच करती हैं,
1: जी
3: एक तो मीनियर्स डिसीज़
1: हाँ
3: और एक वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। मीनियर्स डिसीज़ में क्या रहता है, उसको मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं और वो 1 और 2 डेज सब रहेंगे, चक्कर आएंगे, उसमें वॉमिटिंग होगा और पेशेंट फोर्सफुल हिस्ट्री का कि मैं साहब चल रहा था और चलते चलते गिर गया और फिर मेरे को 5 10 मिनट में देखा तो मैं एकदम ठीक था। और उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑरा के सिम्टम, मतलब उसको पहले से वो जज कर सकता है कि हाँ मुझे जैसे सर भारी होना, कान में भारीपन होना, कान में शाएँ शाएँ की आवाज़ होना, और उसके साथ साथ उसको जैसे मल्टीपल एपिसोड्स होते जाएंगे तो उसके साथ उसको हियरिंग भी थोड़ा डिक्रीज होगा,
1: जी
3: तो ऑडियोमेट्री टेस्ट से हम उसको असेस कर लेते हैं कि हाँ इनका हियरिंग भी डिक्रीज हो रहा है, मल्टीपल एपिसोड हुए तो मीनियस डिसीज है। सेम इस थोड़ा सा मिलता है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से मिलता है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। उसमें हमारी जो हियरिंग नर्व है उसमें इन्फेक्शन या स्वेलिंग आने की वजह से हमारे को जो है चक्कर आते हैं। उसमें और ब्रेन से होने वाले में दोनों में चीज़ सिमिलर होती है कि थोड़ा सा जो चलने की प्रॉब्लम है वो हमारे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस वाले पेशेंट को भी होती है,
1: जी
3: तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है टेस्ट के थ्रू कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है या नर्व का इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ है कान
1: जी
3: की।
1: इसके साथ साथ हमारे पास कई व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे
3: जी
1: हैं। निसार मास्टर हमें लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 73 साल है, और जब ये सुबह उठते हैं तो इनको चक्कर आते हैं।

0: और दिन में लेट कर उठते हुए इनको चक्कर आते हैं, तो प्लीज बताएं कि ऐसा क्यों है,
1: ये मैडम, ये बीपी बीपी का प्रॉब्लम है, पोजिशनल वर्टिगो
0: जिसके
1: है।
0: बारे में अभी
1: हाँ,
0: आपने
1: जिसमें
0: हमें
1: अभी मैंने
0: बताया था।
1: बताया ये
0: जी जी
1: वही है।
0: जी और हमारे को एक और मैसेज आया है बलबीर जी का, वो लिख रहे हैं कि जब मैं थोड़ा टांगों के बल 5 मिनट बैठकर उठता हूँ तो एकदम आंखों में अंधेरा आ जाता है आंखों के आगे। इनकी उम्र 70 वर्ष
1: ये
0: है,
1: मैडम
0: प्रणाम है।
1: पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है।
0: जी,
1: तो
0: डॉक्टर साहब एक और
1: जी जी
0: कॉलर पे हमारे साथ कॉल लाइन पे कॉलर है, जो ले लेते हैं इनका कॉल भी। हेलो
1: जी
2: हेलो।
0: जी
2: हाँ, मैं मेरा नाम रमेश है
0: जी
2: और मेरी वाइफ आरती है, 65 एज है। वो
0: जी
2: जब सुबह उठती है तो उनको थोड़ा चक्कर सा लगता है
0: जी
2: और उसके बाद थोड़ा हेडेक भी होता है, उसका वॉमिटिंग टेंडेंसी भी लगती है। और उसके बाद 5-6 घंटे रेस्ट कर लेती हैं तो काफी बेटर हो जाता है। डॉक्टर को दिखा के सारे टेस्ट वगैरह कराए थे, MRI एक कराया था, सब चीज
0: जी
2: क्लियर है।
0: जी
2: तो मैं आपसे, डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण हो सकता है और हम आगे कैसे बढ़े। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है। आप दोनों डॉक्टर्स को और प्रेजेंटर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे कार्यक्रम करते रहें, बहुत ही जानकारी अच्छी मिल रही है।
0: जी
2: थैंक यू,
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: बहुत
0: सर।
1: बहुत
0: जी
1: धन्यवाद।
2: थैंक यू
1: जो
0: जी
1: मुझे लगता है आपकी जो धर्म पत्नी है उनको
0: जी
1: पोजिशनल वर्टिगो है, क्योंकि वो सुबह उठती हैं तब उनको चक्कर आता है, 5-6 घंटे रहता है, फिर वो थोड़ा सा अडेप्टेशन आ जाता है उनकी बॉडी को, क्योंकि ये लंबे टाइम से चल रहा है। तो इसके लिए आप एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो कि चक्कर का इलाज करते हों, और इसके लिए एक टेस्ट रहता है वीडियो निस्टेग्मोग्राफी, वो टेस्ट कराएं, और उसके बाद उनका एक एक्सरसाइज होगा और वो ठीक भी हो जाएंगी।
2: ओके ओके
0: जी
2: डॉक्टर साहब, थैंक यू
1: जी
2: वेरी मच,
1: जी
2: थैंक यू
1: जी
2: वेरी मच।
1: वेल वेल
0: सर द्वारका दिल्ली से यशपाल हमें लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं, इसके लिए
1: जी
0: आपका धन्यवाद। ये लिख रहे हैं कि इनकी एक रिश्तेदार हैं जो जिनकी उम्र 40 साल है, वो लिख रहे हैं कि ये वर्टिगो है और ये इसकी मेडिसिन लेती हैं। क्या फिजियोथेरेपी इनको एडवाइस की जा सकती है और क्या ये फिजियोथेरेपी वर्टिगो में इनकी हेल्प करेगी?
3: देखिए, डिपेंड करता है कि इनको क्या कॉज निकल के आता है। यंग पेशेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि सर्वाइकोजेनिक होता है, विमेन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं, कि वो हो सकता है। तो एक प्लेन सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जिसको बोलते हैं एक्सरे नेक, AP और लेटरल व्यू, या सर्वाइकल स्पाइन स्क्रीनिंग विद द MRI ब्रेन, वो करा सकते हैं। तो दो ये टेस्ट हैं, वो करवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे इनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले कॉज आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो जब तक कॉज आइडेंटिफाई नहीं होगा तो एक किस्म से ट्रीटमेंट नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा।
0: जी। सर पुष्पेंद्र गर्ग हमें टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि इनकी माता जी की उम्र 56 वर्ष है और इन्हें उन्हें ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ फांस जैसा फंसा हो। इन्होंने ENT भोपाल में भी दिखाया है, एंडोस्कोपी करवाई है, उसमें आहार नाल में लाल लग रही है जो एसिडिटी लग रही है, तो गैस की दवा दी लेकिन आराम उनको नहीं मिला, क्या
1: जी,
0: करें?
1: गैस की दवा जो आप सही बताया उन्होंने, इसको हम लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स डिसीज़ बोलते हैं,
0: जी
1: जिसमें कि साइलेंटली आपको फील नहीं होगा कि आपका एसिड ऊपर आ रहा है, बट पेट से एसिड ऊपर आता है और हमारे गले में जो है वो स्वेलिंग कर देता है। तो उसकी वजह से मरीज को गले में ऐसा लगता है मेरे गले में कुछ चुभ रहा है या कुछ फंसा हुआ है।
0: जी
1: तो एक तो इनको खाने पीने में बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी होंगी, तेल चिकनाई का खाना बंद करना होगा, और खाने के बाद 2 घंटे तक लेटना नहीं है। खाना जो है थोड़ा हल्का खाना है, स्मॉल और मल्टीपल मील,
0: जी जी
1: थोड़ा थोड़ा खाएं मगर दिन में ज़्यादा बार ही खाएं, और चाट पकौड़े, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, इन सब का परहेज भी करना होगा, और दवाई भी रेगुलर इनको 1.5 से 2 महीने के लगभग खानी होंगी, तब जा कर के ये ठीक रहेंगी।
0: जी इसके साथ साथ सर पूजा का दिल्ली से मैसेज आया है कि उन्हें लेटने पर राइट साइड में चक्कर आते हैं, इसका रीजन क्या है?
1: इसका रीज़न जो है मैडम, आपके जो हमारे ईयर में जो बैलेंसिंग कैनाल्स हैं उसमें किसी एक कैनाल में आपके पार्टिकल मतलब स्टोन फॉर्मेशन हो गया है। तो
0: जी
1: इसकी वजह से जब हम वो करवट चेंज करते हैं तो वो पार्टिकल जो है हमारे जाकर के बैलेंसिंग ऑर्गन को स्ट्राइक करता है और उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहा है।
0: सर
1: तो
0: एक और मैसेज है हमारा, हमें हमारे पास दिल्ली से गायत्री का, वो लिख रही हैं कि जब ये सुबह उठती हैं तो इन्हें चक्कर और सिर में भारीपन लगता है, ऐसा रोज़ नहीं कभी कभी होता है, और चलते हुए नीचे या ऊपर देखने पर चक्कर जैसा महसूस होता है। BP शुगर चेक कराया, दोनों समस्या नहीं है।
1: जी मैडम।

0: अब इसमें बेसिकली सुबह सो के उठने के बाद अगर तुरंत हो रहा है
1: जी
0: तो कई
1: जी
0: बारी हमारे वो पोस्चरल हाइपोटेंशन भी हो सकता है कि हम सिटिंग से जब स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर है वो टाइम बिंग ड्रॉप करता है। तो उसके लिए एक तो अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें,
1: जी
0: पानी खूब
1: पानी
0: पिएं
1: जी
0: और अपना प्रॉपर स्लीप लें। अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको वही ENT स्पेशलिस्ट, वर्टाइगो स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और एक बारी अपना चेकअप कराना
1: सर,
0: चाहिए।
1: आपने स्लीप की बात की तो क्या रात में देर से सोने पर ऐसा प्रॉब्लम होता है ये
0: हाँ
1: वर्टिगो का,
0: मैडम,
1: सुबह उठने पर या
0: अगर
1: रात में?
0: स्लीप प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग तो सब
1: जी
0: नॉर्मल ही रहेगा। तो कई बारी चक्कर को अच्छे से पेशेंट जो है डिफाइन भी नहीं कर पाता कि मुझे चक्कर है। कई बारी सर भारी को भी पेशेंट ये बोलता है मुझे चक्कर है।
1: चक्कर जी
0: कई बारी जनरलाइज बॉडी वीकनेस भी होती है तो भी पेशेंट बोलता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो एक तो चक्कर की डेफिनेशन पहले तो जब पेशेंट दिखाता है तो उससे हम ये पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, गोल गोल घूमा लगता है या आप गोल गोल घूमते हो या चीज़ें गोल गोल घूमी हुई या आँखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। तो इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएटेड करके ही हम पता कर पाते हैं कि उसको एक्चुअल में चक्कर की प्रॉब्लम है कि नहीं है।
1: जी सर, इसी से जुड़ा सवाल मैं आप दोनों से पूछना
0: जी जी
1: चाहूंगी
0: जी
1: कि जो वर्टिगो की समस्या है, क्या ये खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है? और जीवन शैली में सुधार और खान पान में अगर ध्यान दें तो कितना काम कर सकता
0: जी
1: है ये?
0: मैडम, ये चक्कर की जो बीपी बीबी की प्रॉब्लम है, पोजिशनल
1: जी
0: वर्टिगो,
1: जी जी
0: ये यूजली फीमेल्स में होती है, मतलब मोर कॉमन है फीमेल्स में। क्योंकि फीमेल्स में एक तो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी रहती है जल्दी,
1: हाँ
0: फोर्टी
1: जी
0: फाइव के बाद में
1: जी
0: सभी को कैल्शियम डिप्लीशन होता ही है और विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट बहुत होती है। अगर आप सनलाइट नहीं ले रहे हैं तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो वो
1: जी
0: लाइफ स्टाइल से एसोसिएटेड हो गया। और आपको साथ में जो है कैल्शियम भी अच्छा चाहिए, हाइड्रेशन भी मेंटेन करना, ये तीन चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं।
1: जी
0: और कई बारी हम ध्यान नहीं देते, माइनर हेड ट्रॉमा भी हमारे को ये पोजिशनल वर्टिगो करा सकता है। पार्टिकल नॉर्मल जगह से इस जगह पर कैनाल में ला करके बैलेंसिंग कैनाल में शिफ्ट कर सकता है, ट्रॉमा भी, तो उसकी वजह से भी हो सकता
1: कुछ
0: है।
1: खाने पीने की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे ये होता है या ये सिर्फ मिथ है?
2: जी
0: ये
2: मैं बोलता हूँ। तो
1: जी
2: इसमें
1: बताइए।
2: देखिए दो तीन चीज़ें हैं। काफ़ी स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आप नमक से सैचुरेटेड डाइट को लेते रहते हैं बहुत लंबे समय तक या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपको मीनियस डिजीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है, या फिर ये कि आपको टिनिटस हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता
1: जी
2: है, या आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं और इतना ज़्यादा वज़न उठाते हैं जो कि आपकी नेक और शोल्डर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको क्रॉनिक डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ का ख़तरा भी रहता है। तो ये दो लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं ये वर्टिगो के लिए सीधी जिम्मेवार हैं,
1: जी
2: ऐसा समझा जा सकता है। इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बोले तो वर्टिगो करेगा, लेकिन हाँ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर जो कि 4-6 घंटे तो आजकल नॉर्मल है ही। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है 12 घंटे 16-16 घंटे आप स्क्रीन देख रहे हो, तो उसके बाद में जब आप
1: फोन लैपटॉप
2: फ़ोन लैपटॉप डिजिटल दुनिया से जब आप बाहर निकलते हो और आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो भी आपको स्पिनिंग सेंसेशन हो सकती है। लेकिन
1: जी
2: यहाँ पे एक चीज़ बोलना बड़ा ज़रूरी है, एक चीज़ होता है वर्टिगो, दूसरा होता है डिजीनेस। तो दोनों अलग अलग तकलीफ़ हैं और अलग अलग बीमारियों का संकेत देती हैं। वर्टिगो का मतलब है कि आपको चक्कर आ रहा है, या तो आप घूम रहे हैं या आपके आसपास की दुनिया घूम रही है, घूम कोई कोई नहीं रहा है लेकिन सेंसेशन है।
1: जी
2: डिजीनेस का मतलब है कि आप अनस्टडी हो गए हैं। अब अनस्टडीनेस ये भी हो सकता है क्योंकि आपका सिर घूम रहा है, आप नहीं घूम रहे, आपका सिर घूम रहा है,
1: जी
2: लेकिन सिर घूमने की वजह से आप अनस्टडी हो गए हैं, ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डिजीनेस जो है वो वर्टिगो का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। लेकिन हाँ जब वर्टिगो डिजीनेस में कन्वर्ट हो जाता है तो आप चक्कर खा के गिर सकते हैं।
1: जी
2: लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोलना बड़ा ज़रूरी है कि जो ऑरा होता है, जैसे मीनियर्स में ऑरा होता है, तो मीनियर्स का जो ऑरा है वो एपिलेप्सी के ऑरा जैसा हो सकता है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की बीमारी का ऑरा, और दोनों एक किस्म से एक जैसे हो सकते हैं, जैसे सब आँखों के सामने तारे टिमटिमाना या सिर में एकदम से घुमावदार सेंसेशन पैदा होना, या फिर मूड खराब होना, उल्टी होना, जी मितलाना या बेहोशी जैसी सेंसेशन होना, अल्टीमेटली चाहे वर्टिगो हो या डिजनेस हो या दोनों एक साथ हो, तो एक थोरो इवेल्युएशन तो चाहिए, उसके बाद ही पता चलता है कि कॉज क्या है।
1: सर, स्ट्रेस कितना इसके लिए जिम्मेदार है या स्ट्रेस से वर्टिगो होने के चांस हैं?
2: वन ऑफ द कॉमन कॉज है, ये अंडररेटेड है। दुनिया में 80 करोड़ लोगों को वर्टिगो है और 30 से 40% जनसंख्या दुनिया की

0: ऐसी है जिन्होंने वर्टिगो एक्सपीरियंस किया है। ऐसा माना जाता है कि कभी ना कभी किसी न किसी को वर्टिगो का एक एपिसोड तो होता ही है।
1: जी
0: ये इतनी कॉमन आम बीमारी है।
1: जी
0: तो अब बात आती है कि स्ट्रेस तो यूबिक्विटस है, हम सबको स्ट्रेस होता है। जब तक थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो यू स्ट्रेस है, तो वो तो सही है। लेकिन जब ये एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हो जाता है तो इनएस्केपेबल हो जाता है, तो तब ऐसा हो सकता है कि एंग्जाइटी जनरेट हो और एंग्जाइटी की वजह से आपको स्पिनिंग सेंसेशन
1: जी
0: हो।
1: आप दोनों से जानना चाहूंगी कि क्या ये वर्टिगो जड़ से खत्म हो सकता है?
2: डिपेंड करता है मैडम कारण क्या है।
1: जी
2: अगर वो ट्रीटेबल कॉज है, सेंट्रल लीजन नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट के मैं बोलता हूँ वर्टिगो जड़ से ठीक हो सकते हैं। अब जैसे हमारा
1: जी
2: ये पोजिशनल वाला है, इसमें पार्टिकल बार बार ही फॉर्मेशन होने की कई बारी टेंडेंसी होती है, तो उसको आप विटामिन डी, कैल्शियम एनरिच रखें, कैल्शियम लेते रहें और मैग्नीशियम भी लेते रहें, मैग्नीशियम का भी रोल आ गया है आजकल, और अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। तो ये बेसिक अपना रखेंगे अच्छा नॉर्मल,
1: जी
2: इस पर ख्याल रखेंगे हाइजीन पर, तो आपके जो इंसिडेंसेस हैं, जो होने की टेंडेंसी
1: जी
2: है, वो कम हो जाएगी।
1: जी
0: जी प्रिवेंशन पॉसिबल है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, जंक फूड से बचें, तो मिडल ईयर का प्रेशर भी कम रहेगा।
1: जी
0: और इसके अलावा आपको जो हाइपरटेंशन होने की टेंडेंसी है तो वो टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। तो एक किस्म से टू सम एक्सटेंट प्रिवेंशन पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये करके इसको, बीमारी को मिटिगेट किया जा सकता है, इसको काबू में किया जा सकता
1: जी
0: है।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि क्या ये वंशानुगत है और गर्भवती महिलाओं में ये समस्या आती है तो इसका कारण क्या हो सकता है?
0: पहले सवाल का जवाब तो है
1: जी
0: ना, मतलब ये
1: वंशा
0: जेनेटिक नहीं है।
1: जी
0: जहाँ तक प्रेग्नेंट वेमेन की बात है, देखिए प्रेग्नेंट वेमेन में वर्टिगो का कोर्स सेम होता है एज दैट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वेमेन, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकते हैं कि अगर चक्कर खा के गिर गए तो दो नुकसान होंगे, बेबी को और मदर को।
1: जी
0: सो एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर दूसरा, क्योंकि प्रेगनेंसी में पोस्चर भी चेंज होता है, क्योंकि देखिए वज़न बढ़ता है, 9-10 किलो तक वज़न बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो पोस्चर में चेंज आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का चांस ज़्यादा होता है, तो वर्टिगो की संभावना भी आम लेडी से थोड़ी ज़्यादा होती है।
1: डॉक्टर, आप क्या
2: जी
1: कहेंगे?
2: मैडम, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में और भी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी की, तो चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। तो जैसा सर ने बोला कि ख्याल तो रखना ही है और डबल रिस्क भी है,
1: जी
2: तो इसलिए आपको अपना डॉक्टर से, जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करते हुए कैल्शियम वगैरह अपना टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। वो उनको ऐसा नहीं है कि कैल्शियम दे रहे हैं तो डॉक्टर बेकार में दे रहे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है।
1: डॉक्टर साहब, अब समय बहुत कम रह गया
2: जी
1: है,
2: जी
1: तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि वर्टिगो की समस्या ना हो, इसके लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम सेफ रह सकें? जी
2: मैडम,
1: हाँ
2: एक
1: जी
2: तो पहले
1: जी
2: अपना जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहें, और आज की तारीख में थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल इंजरीज भी हो रही हैं हमारे मोबाइल एब्यूज़ की वजह से, ओवर
1: जी
2: यूज़ की
1: जी
2: वजह से, तो उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि उससे आजकल टिनिटस और डिक्रीज हियरिंग भी हो रहा है। और बाकी जैसा मैंने बोला, विटामिन डी, हाइड्रेशन, और सर ने भी जैसे अभी बोला था कि एक्सेसिव एक्सरसाइज, जिसकी वजह से हमारे नेक में डिजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको अपने एक एक्सटेंड तक, एक लिमिट में ही अच्छी रहती हैं, तो वही करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर
0: बाकी
1: विक्रम,
0: सर,
1: जी
0: हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रेश वेजिटेबल्स। सो हेल्दी लाइफस्टाइल से तो ये जो इंजरी की संभावना कम हो जाएगी और जो बाकी बीमारियां हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनका चांस कम हो जाएगा। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से नर्व्स मजबूत होती हैं, जैसे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है तो उसकी संभावना कम हो जाएगी, या जो ट्रांजियंट इस्कीमिक अटैक है उसकी संभावना कम हो जाएगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए इन जनरल जरूरी है।
1: हाइड्रेट रखें उसके साथ
0: हाइड्रेट
1: साथ,
0: रखें, बिल्कुल गर्मी में बहुत आवश्यक है।
1: जी, और उसके साथ फोन से थोड़ी सी दूरी बना के रखें,
2: जी
1: बहुत जरूरी है ये।
0: हाँ, ये अभी कोई 1 महीना पहले हमने कार्यक्रम किया था डिजिटल डिमेंशिया में, तो उसमें एक टीनेजर को आकाशवाणी ने बुलाया था, शी वॉज ऑल ऑफ 14 ईयर्स। तो उसने काफ़ी अच्छा बोला कि देखो, मेरी उम्र के जो बच्चे हैं जो मोबाइल में घुसे रहते हैं, दुनिया जो मोबाइल से बाहर है, दुनिया पार्क में है, दुनिया साइकिलिंग में है,
1: हाँ जी
0: स्विमिंग में
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये था हमारा आज का विषय जो जुड़ा था वर्टिगो सिम्टम कॉजेज एंड क्योर से, और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी हमारे विशेषज्ञों ने, डॉक्टर विकास ढिकप जो है न्यूरो साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर विनीत गुप्ता जो है ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, आप दोनों यहाँ आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज के लिए

0: अपनी दोस्त पूजा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल पहाड़ नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ और हमारे ओबी

0: टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षत मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझें बल्कि उसको हम रिसोर्स समझें। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी हैं यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
2: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल्स में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना, इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना।

वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पे भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊँ, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारी इलेक्ट्रिक हो रखी है, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफ़ी काम चल रहा है, जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल्स से बनाया जा रहा है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहाँ पे इंटीग्रेटेड STP प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जो कि करीब 1500 kg तक का कंपोस्ट एक दिन में वहाँ पे कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है, जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको

0: पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरी कल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं हमारे सैनिक हैं ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का सोल्जर्स का बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं जो जीरो वेस्ट कैंप है जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: साहब हमसे बात करने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आरबी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही

0: किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
0: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
0: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज,
0: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेस की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
0: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं?
0: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
0: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी, सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर, हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर, जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके, जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो कैंस रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर,
1: थैंक यू सर, हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है, या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके, जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होकर हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल्स, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी ना खिलिप रागिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल

0: फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
1: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कम्फर्टेबल भी है।
0: और सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
0: और सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
1: जी, ये जो मार्क 80 केजी का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 केजी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 केजी वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
0: Absolutely, 80 kgs waste. आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना कितनी अहम चीज है, ये कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
1: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
0: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर।

0: इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWAs और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें साइंटिफिक

0: तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट

0: कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
1: जय हिंद। आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
0: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
1: देखिए अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
2: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
1: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
2: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कंप्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, CCTV रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयज होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
0: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
3: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है, हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा, ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा। हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

0: हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। FM 102.7 MHz आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो शुरू होने जा रहा है तुहाडा अपना मनपसंद प्रोग्राम युवाणी, ते मैं हाँ तुहाडी दोस्त RJ प्रिया,
1: ते मैं RJ काव्या। असीं दोवें हाजिर हाँ तुहाडे सामने शो युवाणी लै के। ते अज खास है दिन, तो तुसीं जानदे हो साडे सरोते कि असीं तुहाडे लई हर रोज़ इनफॉर्मेशन, मज़ा ते सोंग्स दा फुल पैकेज लै के आने हाँ। ते अज दी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई है कि अज सैगमेंट्स वर्ड एक्सप्रेस दे नाल नाल तुहानूं एक बड़ा प्यारा जो इंटरव्यू असीं सुनावांगे एक खास इंसान दे नाल। जे तुसीं जे तुसीं पढ़ते हो लिखते हो तो तुसीं जरूर इस प्रोग्राम सुनियो, तो असीं तुहानूं सुनावांगे। इस तो बाद तुहानूं दस्सांगे साइंस टेक्नोलॉजी दी की चल रही है खबरां ते की चल रहा है इस समय,
0: ते बस इंटरेस्ट अपना तुसीं पीक ते रखना है। ते दोस्तों, अज दा दिन जिहड़ा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी ते प्यार नाल भरिया होया, क्योंकि असीं अज बच्चियां बारे गल करनी है। मतलब बच्चियां बारे सोच के सारे खुश हो जाते हैं, क्योंकि सानू अपना बचपन भी याद आ जाता है, उन्होंने वेख के उन्होंने हाथ में जिहड़े टॉयज देख के, तो खास कर मैं कभी कभी होंगे कि मैं भी उन्होंने बह के ना जाके खेडना शुरू करता। पर कई तो ना कि असं देखते हाँ कि बच्चे जो बड़े मासूम तो होंगे है, बड़े कोमल कोमल बोले बोले जे, पर इस ही उन्होंने भी किसी ना किसी जगह किसी ना किसी थान ना थोड़ा जहा स्ट्रगल फेस करना पैदा है, जिदा थोड़े गुस्से का, थोड़ी नाराजगी का, तो कदें कदें पेरेंट्स दक्सपैक्टेशन का भी।
1: जी, छोटे बच्चों ने बहुत ही प्यारे तरीके दसिया कि बड़े मासूम, तो उन्होंने जी मासूमियत है ना, वो कितने ना कि कभी कभी लुक जाती है। असी ये नहीं दस पाते कि कभी कभी असी ज़्यादा गुस्सा कर जाने या अपने ही जिंदगी कशमोकश जो भी साढ़े बिच नैगेटिव इमोशन ने, गुस्सा आया, खिजवा, मतलब कई कभी कभी इंसान का मूड नहीं चंगा होंगे, तो असी ना कई बार नहीं समझते, तो एक बच्चे तो निकल जाता है। बट एक बच्चा भी की है, हले वो दुनिया नू समझ रहा है, वड्डा हो रहा है, वो चंगी तरह नहीं जानता कि दुनियादारी की है, किस नाम की चिड़िया है, तो कितना कितने अज असी उस बारे

0: सही गल कर रहे हैं। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। हर साल 4 जून नू ये मनाया जाता है। 1982 विच यूनाइटेड नेशंस ने ये दिन शुरू किया सी। इसका मकसद उन्हें बच्चों के पीड़ा नू याद करना सी जो जंगा हिंसा या आतंकवाद या घरेलू टकरावान या जान समाजिक हिंसा का शिकार होंगे ने। असी आम देखते हैं कि कई बार सानू भी बहुत ज़्यादा तरस आता है जदों भी कोई छोटा जिहा बच्चा उसनू घरेलू प्रॉब्लम करके या
1: बिल्कुल
0: किसी भी तकलीफ करके कोई कुछ काम करना पैंदा ते सानू भी बहुत तरस आता क्योंकि असी भी कभी कभी मदद नहीं कर पाते। बट मैनू ये भी चंगा लगता है कि वो बच्चा अगे आ के दुनियादारी नू घट उम्र च ही समझना शुरू कर
1: बिल्कुल,
0: देंदा ना।
1: मतलब उन्हां दे विच मैच्योरिटी लेवल भी ज़्यादा वध जाता है ते इंटेलेक्चुअली वो ज़्यादा होंगे है बाकी बच्चों तो, जे असी कंपेयर करिए, क्योंकि उन्हां नू सिचुएशंस नू हैंडल करना बहुत छोटी उम्र च आ जाता है। वड्डे होंदे होंदे उन्हां नू चीज़ां नू समझना, लोकां नू समझना ते किस सिचुएशन च किद्दां रिएक्ट करना है बहुत चंगी तरह आ जाता है। पर मैनू फिर भी लगता है कि इस चीज़ नू ग्लोरीफाई नहीं
0: नहीं
1: करना
0: करना
1: चाहिए,
0: चाहिए बिल्कुल
1: बल्कि प्रमोट करना चाहिए है उन्हां दी एजुकेशन नू
0: जी।
1: ते उन्हां नू प्यार तां भरपूर मिलना चाहिए है, क्योंकि एक गोल्डन पीरियड है किसी भी बच्चे लई, सारिया लई, बल्कि एक गोल्डन पीरियड है जदों बच्चा ग्रो करता है उसनू सब तो ज़्यादा तुहाडे प्यार दी लोड़ हुंदी है कि तुसीं किद्दां उसनू पैंपर कर रहे हो, किद्दां उसनू सिखा रहे हो, उहदी गलतियां ते उहनू डांटन दी बजाय उहनू प्यार नाल समझा रहे हो। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी
0: औखा
1: भी
0: भी
1: बच्चे
0: लगता है
1: लई।
0: कई बारी असी अपना गुस्सा या जे न्याणा बहुत ज़्यादा इलती है तुहाडा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है नहीं समझ पाता। पर देखो प्यार ते सबर अपने आप च भी आएगा। असी हौली हौली कुछ ना कुछ स्टार्ट करांगे तो तद बच्चे भी समझणगे
1: बिल्कुल
0: ते जिहड़े असी आस पास भी न्याणे देखदे हाँ जो इस नाल गुजर रहे ने उन्हां लई असी कदे ना कदे अपनी कमाई विचों या कोई लोग चंगा काम करते ने तुसीं उन्हां नूं कुछ खाण नूं या 2 घड़ी बह के प्यार नाल जे गलबात भी कर लोगे उन्हां लई बहुत होएगा।
1: बिल्कुल, ये गल बिल्कुल सही है। अपने आस पास के बच्चे हैं उन्हां नाल भी प्यार नाल थोड़ा जिहा सानू बिहेव करना चाहिए। जे बाहर खेड रहे हैं तो खेडन दिओ, कई बार लोग गुस्सा कर जाते हैं है ना,
0: जी
1: उन्हां नाल प्यार नाल 2 बार गल्लां कर लोगे वो बहुत ज़्यादा खुश होणगे, ते जे तुसीं ये प्यारा जिहा गीत सुनोगे तो तुसीं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे।

0: जी हाँ दोस्तों, बच्चियां दियां गल्लां बातां करदे नचदे टपदे वापस असी स्टूडियो वल नूं आ गए हां। ते बच्चियां बारे गल करदे करदे मैनूं याद आया कि हुण तां शुरू होण जा रहा साडा अज दा पहला सैगमेंट वर्ड एक्सप्रेस। ते बच्चियां बारे गल कर रहे हां तां एक शब्द भी इहो जिहा ही होना चाहिए जिहड़ा बच्चियां बारे ही होवे। की सोचदे हो तुसीं?
1: जी बच्चों, तो मैं सोचती हाँ मैं अपने छोटे भरा बारे, क्योंकि वो हले बहुत ही छोटा है, तो उसकी एक आदत बारे। तो हर एक बच्चा जो अपने असी सारे करते हैं निके होंगे, वो है शरारत, यानी कि इल्लता।
0: बिल्कुल। ते मैनू तो लगता है जदों मैं छोटी सी ना उदों तो लैके हुण तक भी मैं यह शब्द इन्नी बारी सुनिया होना ना मम्मी तो कि तू इन्नी इलती है। अज सवेरे भी मैं सिर्फ छोटा जिहा काम किया, कुछ वड्डी शरारत तो वैसे की नहीं।
1: अच्छा।
0: सी मैं सिर्फ अपनी भैन के कपड़े बाहर सुटते सी,
1: क्यों?
0: बस उदा ही मजाक च। ते बस उदों दे मेरे मम्मा मेरे तो थोड़े जे गुस्से भी हैं, तो उन्होंने यही किया कि इन्हों दियाँ इलता ही नहीं मुकदियाँ। तो मतलब ये जिहड़ा जिहड़ा शब्द है काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुंदा है। साडे पंजाबी जिहड़े पेरेंट्स हैं हजे भी यूज़ करते हैं, पता नहीं अगली जनरेशन हुण यूज़ करेगी या नहीं, पर वर्ड जो देखिए तो काफ़ी चुलबुला जिहा है।
1: बहुत ही प्यारा शब्द है, मतलब ये ना आम थानू पिंडा विच सुनन नू काफ़ी आम ही मिलेगा कि ये न्याणा तो इलता करता है। किते चल जूंगे बीबियां बहुत ज़्यादा बोल दियां ने, उन्हां दे मुँहों में सुने है बहुत इलती है, ये टेक के नहीं बहिंदा, भंभीर ही आ बिल्कुल, ये जरूर सुनन नू मिलदा।
0: ज़्यादा है बड़ा फुर्त।
1: हाँ, ये सब मैनू इस करके पता है ना क्योंकि मेरे भरा नू ये सब सुनना पैंदा, ते मैं बिल्कुल उल्ट सी। मैं ज़्यादा शरारत नहीं करती, बट खट्टी मिठी शरारत तो सारे ही करते, मैं भी हले करती हाँ। मम्मी नू तंग करना या पापा नू प्यारा जे तंग करना, मैं तुहानू दसदी प्रिया, जिवें तुसीं एक किस्सा शेयर किया ना, मैं भी तुहानू दसदी हाँ। मैनू ना छोटे दिन तो आदत है मम्मी दे काम करन ना किचन च, ते ना मम्मी दी गुत ते रबर बैंड हुंदा सी उहनां दा, ते
0: ओह
1: ना मैं किधर ला के सिट देना या मैं लै के भज जांदी हुंदी सी। मम्मी कहना आ मेरी गुत किन्ने खोलती, मैं मम्मा पता नहीं मैं तो खोली नहीं, पता नहीं आपे टिक गया होना, गुट ढिली हो गई। मम्मी मम्मी नू फिर हुंदा सी हाय मेरे बाल पतले हो गए, मैं तो होर तेल लाना चाहिए। तो इवें बस खट्टे मिठे जो प्यारे जी शरारता इलता असी करते रहे।
0: मम्मी ने जे एपरन बन्या है तां ओह खोल के भर जो है ना, या मम्मी जे हुण पता है कि पानी दी बोतल लैण जा रहे हैं फ्रिज वाल नूं, तां पहलां ओही जिहड़ी सब तो ठंडी है ओह लैके भर जो, फिर भावें ओह बाद च बोलदे रहण।
1: या गर्मियां दे विच ठंडा पानी पी के तुसीं थोड़ा इन्ना क रख देना कि मम्मी मैं तां पीता नहीं, ओह पता नहीं किन्ने
0: पानी किन्ने पीता ते बोतलां नहीं भरियां। इक तां ठंड दा जिहड़ा गर्मियां दा मौसम है ना, उस विच बोतलां भरना सब तो वड्डा टास्क है।
1: कोई नहीं उठ के राजी ठंडे कमरे विचों या कूलर मोरे कोई नहीं उड़दा,
0: ते कूलर च पानी भरना ते उदो जड़ी जड़ी घा हुंदी है कूलर च ओ कट कट के बाहर सिट्टी जानी, फिर बाद च मम्मा ने कहना ये इलता की दियां सी दस दो आपे है ना। ते ए छोटियां छोटियां इलता जड़ा गर्मियां दा मौसम जड़ा है काफी ज्यादा मेमोरीज यादा नाल भरिया है ना, इना छोटियां छोटियां इलता नाल भरिया है। ते बचपन इदां दा ही हुंदा है, मस्तियां नाल भरिया होया।
1: ते तुसी ए शब्द हुण तुसी जानदे हो वरतदे हो, जे तुसी नहीं वरत रहे तुसी इहनूं जरूर अपने शब्द कोश विच रखो ते वरतो। ते इस दे नाल एक होर शब्द है बड़ा पेंडू जो शब्द है, कतेत शब्द। तुसी ए भी आख सकदे हो किसी भी न्याणे नूं या जो बहुत ज़्यादा शरारतां कर रहा है, तुहाडा कहना नहीं मन रहा, कतेत है एक नंबर दा है, तां ए कतेत है।
0: ए काफ़ी यूनीक है क्योंकि पहलां बहुत ज़्यादा बोलिया जांदा सी कतेत शब्द, हुण इलती भावें असीं सुण लैंदे हां कतेत शब्द, मतलब काव्या ने एकदम कह लो कि नोस्टेल्जिया वाला हो गया है ना, कि बहुत छोटे होंदे कदी सुनिया होना कदी नानी तो या दादी तो, ते हुण तां इह शब्द सुनन नूं भी नहीं मिलदा। ते एक बहुत सोहणा शब्द है, जरूर इहनूं वरतो ते अपनी पंजाबी बोली नूं प्रमोट करो। ते बस इहो जे प्यारे प्यारे शब्द बोलदे रहो ते इंजॉय करदे रहो।

0: जी हाँ दोस्तों, शरारतां तां बहुत जरूरी है जो असीं करदे ही रहिंदे आ, पर मैनूं लगदा इस दे नाल नाल पढ़ाई लिखाई भी उन्नी ही जरूरी है। ते जदों इंस्पिरेशन मिल जाए ना पढ़न दी, तां पढ़न दा जिहड़ा जोश है ओह दुगना हो जांदा है ते मज़ा भी दुगना हो जांदा है। इस लई हुण ना इंस्पिरेशन वल चलदे आ, थोड़ा जिहा इंस्पिरेशन लैण लई असीं अगे वधदे आ ते सुणदे आ बड़ा इनफॉर्मेटिव जिहा इंटरव्यू। ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
1: ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ

0: मिशन पूरी तरह कार्यरत है। इसरो दे 12 सैटेलाइट्स वाल भारती सैट अर्थ ऑब्जर्वेशन नेटवर्क पूरी तरह ऑपरेशनल हो गए ने। इस नाल खेती आफत प्रबंधन ते वातावरण निगरानी नू बहुत फायदा मिलेगा। इस नाल एआई जगत विच एआई ते क्वांटम कंप्यूटर दा मिलन भी हो रहा है। खोज करन वाले IBM क्वांटम कंप्यूटर दी मदद नाल AI सिस्टम ट्रेन कीते जो कुछ मुश्किल सवालों का जवाब आम मॉडल तो वधिया तरीके दे नाल दे सकदे ने।
1: ते इस दे नाल ही देश दे चिप इकोसिस्टम नू लैके भी एक वड्डा अपडेट आया है। सरकार ने एक व्यापक 10 साला सेमीकंडक्टर रोड मैप दा ऐलान कर दिता है। मतलब सेमीकंडक्टर बारे जेडी असी खबरां सुन रहे सी उसनू एक मार्गदर्शन जिहा मिल गया है। इस योजना तहत गुजरात दे तौलेरा विखे भारत दा पहला वड्डा फैब्रिकेशन यूनिट साल 2028 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा, यानी ऑनलाइन होने की उम्मीद है, जिस नाल देश चिप निर्माण दे खेतर विच आत्मनिर्भर बनेगा।
0: ते इस दे नाल हुण खबर आ रही है कि नासा दी चंद्रमा मिशन योजना अगे वध रही है। नासा ने चंद्रमा ते स्थाई आधार स्थापित करन लई अगले मिशनां दी तैयारी जोरों शोरों ते चक्की हुई है। ते एम्स ते इसरो स्पेस मेडिसिन सहयोग भी नवां खबर आ रही है। एम्स ते इसरो मानव अंतरिक्ष यात्रा लई स्पेस मेडिसिन ह्यूमन फिजियोलॉजी ते हेल्थ रिसर्च ते मिल के काम कर रहे ने।
1: क्या बात है। ते स्टार्टअप फीडिंग ते आर्थिकता बारे भी गल कर देने आ। स्टार्टअप फीडिंग ते आर्थिकता दी गल करते हुए देश दे स्टार्टअप बाजार विच मई 2026 दे महीने विच भारतीय स्टार्टअप विच वेंचर कैपिटल फीडिंग दी रफ्तार थोड़ी जी मट्ठी देखण नू मिली है। इस महीने वक्-वक् डील्स दे तहत कुल $630 मिलियन दी फीडिंग दर्ज की गई है। हालांकि मशहूर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म रैपिडो ने इस विच सब तो वड्डा हिस्सा हासिल करदिआं इकल्यां ही $240 मिलियन दी वड्डी फीडिंग जुटाई है। क्या बात है। मतलब पर चंगी खबर यह है कि हुण जून महीने दी शुरुआत बहुत ही शानदार ते सरगर्म निवेशां नाल हुई है, हेल्दी क्लीन लेबल फूड ब्रांड नाल। ते हुण लगदा है काव्या कुछ खास कहना चाहुंदे है।
0: मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत ही वधिया खबर आ रही ने ते बहुत ही प्यारा प्यारा समागम चल रहा है। तुसी सुन रहे हो खबर, बट खबर सुन सुन के कई बार बोर भी हो जाने। असी तुहाडे लई एक प्यारा जिहा गीत लेके आने हाँ। ते उस तो पहले जान तो पहले एक होर खबर सुन के जाओ। गैलेक्स आई द दृष्टि सैटेलाइट भारतीय स्टार्टअप गैलेक्स आई ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार यानी कि OPTOSAR सैटेलाइट लॉन्च किया है। रेडार ते ऑप्टिकल इमेजिंग नू इकट्ठे वरतदा है।
1: क्या बात है।
0: ते खेती ते AI दे सैटेलाइट विच होर बहुत वधिया खोजा हो रही ने। ते असी होर भी देख रहे हैं कि क्या वधिया वधिया चल रही ने इंडिया विच वधिया तरीके दे नाल। ते तुहाडे लई असी हुण एक प्यारा जिहा गीत लैके आने हाँ। ते तद तक तुसी इंजॉय करो यह गीत।
1: मैनू लगता है काव्या ना बड़े कंफ्यूज है कि उन्होंने अगे गल करनी चाहिए है कि गीत सुनाना चाहिए।
0: नहीं नहीं असी अपने स्रोतियां लिए प्यारा जो सतेंद्र सरताज लिए गीत लेके आए हैं। तो तुम ये इंजॉय करो असी वापस आने।

0: है ना, वो
1: बिल्कुल,
0: काजू तो बहुत
1: बस
0: वधिया चीज
1: तड़कन
0: है।
1: दा डर रहंदा है कि टुट जाएगा, पर फिर भी सेहत लई कुछ भी है ना, सेहत
0: जी
1: नालों महंगा कुछ नहीं हुंदा, ते सेहत दा ध्यान रखो, ते बहुत वड्डी वड्डी ते वधिया इनोवेशन है मैनू लगदा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जदों इन्ने कॉन्शियस है कि वो फिल्टर
0: बिल्कुल
1: कर पा रहे, इसका मतलब उन्हां दे दिमाग च एक क्लैरिटी है कि इहदा नुकसान किन्ना ज़्यादा हो सकता है सानू सारिया नू, ते वो ध्यान च रख रहे इन्हां चीज़ां नू, ते मैनू लगदा है तुहानू सारिया नू वी इन्हां चीज़ां नू ध्यान च रखना चाहिए, ते हुण एक प्यारा जिहा गीत भी सुन लेना चाहिए।

0: जी हाँ दोस्तों, नशा तां युववाणी नूं सारिआं दा चढ़िआ है ते हुण इजाजत लैण दा समां वी हो रिहा है। इस लई मैनूं आरजे प्रिया नूं
1: ते मैनूं आरजे काव्या नूं दो इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: मेरा एक जिद्दी गुआंडी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मननु तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब का बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

नमस्कार, पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनजुएला दे कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रीगेज नाल व्यापक विचार वटांदरे कीते। दोवां नेतावां ने दुवल्ले संबंधां दे सारे पहलुआं दी समीक्षा कीती। सर्वोच्च अदालत ने अदालतां च आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस दी वरतों बारे एक खरड़ा जारी कीता। सरकार वल्लों साल 2026 लई 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारां दा ऐलान। केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने एशियन रिले एथलैटिक्स चैंपियनशिप 2027 दी तैयारियों च बुनियादी ढांचे दी योजनावां दी समीक्षा की। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वल्लों पटियाला स्थित गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहिब नूं प्रसाद वंडण लई वरते जाण वाले रवायती प्लास्टिक बैगां नूं चौगिरदे पक्खी बनाउण दी अपील की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ऐलान तो 24 घंटिया के अंदर पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों वालों मनमाने ढंग नाल फीसां च वाधे ते रोक लई कानून दा खरड़ा बनाउण दे हुकम दिते ने। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों मुलाजम जथेबंदियों नाल मुलाकात, जायज मंगां ते जल्द कार्रवाई दा दिता भरोसा। साल 2025-26 दौरान बिस्त दुआब नहरी नैटवर्क हेठ सिंचाई अधीन रकबे च होईआं 167% वाधा। जलंधर, SBS नगर, कपूरथला ते हुशियारपुर च सिंचाई सहूलतां होईआं मजबूत। पंजाब पुलिस वल्लों वड्डी दहशतगर्दी साजिश नाकाम, 2.5 किलो RDX आधारित IED समेत 2 मुलजम कीते काबू। ते मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ च 5 ते 6 जून नूं गरज चमक नाल हल्की वर्खा दी पेशनगोई कीती है। इस सन FM न्यूज़ हेडलाइंस। हुण तों कुछ कु पलां बाद तुसीं साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे हरीश दे नाल फिल्मी दुनिया।

हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने। हाजिर हो गया मैं यानी तुहाडा दोस्त हरीश लैके तुहाडे बहुत सारे प्रोग्राम्स एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट एंड मस्ती भरपूर। सफर साडा अज दा स्टार्ट हो गया है और आगाज हो चुका है हरीश नाल तुहाडे और साडा ये जिहड़ा सफर है उहदा पहला पड़ा फिल्मी दुनिया जिस विच फिल्मां दीयां कहानियां फिल्मी हस्तियां कलाकारां गाणियां दी गल हुंदी है फिल्मां दी गल हुंदी है और उन्हां हस्तियां दी गल करने आ जिहड़े साडे हीरो ने साडे फेवरेट आर्टिस्ट ने साडे फेवरेट एक्टर्स ने और किते ना किते असीं उन्हां दी तरह बनन दी कोशिश करदे आ और फिल्मी दुनिया प्रोग्राम दे विच उन्हां सब हस्तियां बारे मैं तुहानूं दसदा और उन्हां दे संघर्ष दी कहानी उन्हां दे स्टार बनन तक दा सफर और किवें उन्हां ने साडे दिलां दे विच जगह बनाई और वह जगह बनाउण दे विच उन्हां नूं किन्नी मशक्कत करनी पई। ये सारियां कहानियां ये सारे फिल्मी ख्वाब दी वो तस्वीर जींदी जागदी जो असी फिल्मों के जरिए देखते हैं

तू प्यार का सागर है, नूतन जी की फिल्म का यह ट्रैक असी इंजॉय किया। और मैं तुहानू जांदे जांदे कह के गया सी कि एक होर हस्ती की गल करांगे असी, और वो हस्ती कमाल दा सिंगर, दोस्तों इन्नी मखमली आवाज़ उन्हां दी, इन्नी कमाल दी आवाज़ उन्हां दी कि जदों असी उन्हां दे गाने सुनते हैं ना तो आवाज़ डायरैक्ट दिल तक पहुँचती है, दिल ते वार करती है और सानू अपना बना लैंदी है। और वो आवाज़ केड़ी है, वो आवाज़ चलो मतलब गल्लां ते उन्हां दियां करनियां ही हैं आपां, बट तुहानू पहलां उन्हां दा एक ट्रैक ही सुना दिंदा मैं, तुहानू पता लग जाएगा कि मैं किस सिंगर की गल कर रहा। होर कोई नहीं, वो ये ने, पता लगा मैं किन्हां दी गल कर रहा, आवाज़ तो पता लगेगा ना, म्यूजिक तो की पता लगेगा।

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनजुएला दे कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रीगेज नाल व्यापक विचार वटांदरे कीते। दोवां नेतावां ने दुवल्ले संबंधां दे सारे पहलुआं दी समीक्षा कीती। सर्वउच्च अदालत ने अदालतां च आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस दी वरतों बारे एक खरड़ा जारी कीता। सरकार वल्लों साल 2026 लई 29वें राष्ट्रपति ई गवर्नेंस पुरस्कार दा ऐलान। केंद्री शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने एशियन रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 दियां तैयारियां ते बुनियादी ढांचे दियां योजनावां दी समीक्षा कीती। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वल्लों पटियाला स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु दुख निवारण साहब नूं प्रसाद वंडण लई वरते जाण वाले रवायती प्लास्टिक बैगां नूं चौगिरदे पक्खी बनाउण दी अपील। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे ऐलान तों 24 घंटियां दे अंदर पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलां वल्लों मनमाने ढंग नाल फीसां च वाधे ते रोक लई कानूनां दा खरड़ा बनाउण दे हुकम दित्ते ने। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वल्लों मुलाजम जथेबंदियां नाल मुलाकात, जायज़ मंगां ते जल्द कार्रवाई दा दित्ता भरोसा। साल 2025-26 दौरान बिस्त दुआब नहरी नैटवर्क हेठ सिंचाई अधीन रकबे च होया 167% वाधा। जलंधर SBS नगर कपूरथला ते होशियारपुर च सिंचाई सहूलतां होईयां मजबूत। पंजाब पुलिस वल्लों वड्डी दहशतगर्दी साजिश नाकाम, 2.5 किलो RDX आधारित IED समेत 2 मुलजम काबू। ते मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च 5 ते 6 जून नूं गरज चमक नाल हल्की वर्खा दी पेशनगोई कीती। एसन FM न्यूज हेडलाइंस। हुण तों कुछ पलां बाद तुसीं साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे, मस्ती जंक्शन।

0: जी है ना।
1: हाँ, मच्छर साइकिल दे सी और उन्हें हाथी ने लिफ्ट मंगी बट मच्छर ने लिफ्ट नहीं दी। वाय क्यों क्यों क्यों क्यों? ओहो तुहाडे कोल सिर्फ 5 सेकंड है। 1 टक टक टक टक टक टक 2 टक टक टक टक टक 3
0: टक टक टक टक। बहुत मोटा सी मच्छर, बहुत छोटा सी और मच्छर नु साइकिल चलाना आंदा नहीं सी।
1: गलत गलत
0: मच्छर ने नु लत वाली हाथी देख गया।
1: ओह नो नो नो, सीधी मतलब साइकिल ते जा रहा सी, ओदी बेचारे दे पीछे कैरियर ही है नहीं सी बैठन लई, ओ किवें बिठाउंदा ओनु। ओहो कैरियर ही है नहीं सी। थैंक यू सो मच कोमल जी, इतनी जबरदस्त जिद नहीं करी दी बेटे। थैंक यू, थैंक यू सो मच कॉल करने लई कोमल जी। और जेकर तुसी भी चाहुंदे हो कि मैनू कॉल करो और इदां दे सवालां दा जवाब, इंट्रस्टिंग सवाल पूछे जाणगे और इंट्रस्टिंग जवाब तुहाडे कोल हैगे कि नहीं, तुसी मेरे तक पहुँचना है। 2342174 साडा नंबर डायल करना, मेरे तक पहुँचना है, फिर मैं तुहानू पावांगा सवाल। ते चुटकले अज मैं ही सुनाने हैं तुहानू, चुटकलियां वाला टाइम भी तुहानू देंगे, टेंशन नहीं लैनी तुसी। जेकर चुटकले तुसी भेजना चाहुंदे हो, कोमल जी मैनू चुटकला सुनाना चाहुंदे सी, बट जेकर तुसी चुटकला सुनाना चाहुंदे हो मैनू वट्सएप ते चुटकला अपना भेज सकदे हो। 9855101027 ये साडा वट्सएप नंबर है, इत्थे तुसी चुटकला भेजो और मैं वो चुटकला जरूर शेयर करांगा लिसनर्स दे नाल, तुहाडे नाल। और फिलहाल गाना इंजॉय करदे हां, उस तो बाद वापस आना ते एक होर लिसनर नाल गल करांगे आपां।

0: पर हम नाचे बिन घुंगरू के 102.7 FM रेनबो ते हरीश दी आवाज थोड़े तक पहुंच रही है और प्रोग्राम चल रहा है मस्ती जंक्शन और इस प्रोग्राम च एक होर लिसनर साढ़े तक पहुंच गए ने गल करदे उन्हां दे नाल। हैलो
1: हैलो सत श्री अकाल हरीश जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो जी और कित्थों गल कर रहे हो?
1: मैं जी मुख्तियार सिंह पिंड अमीर शाह वाला महू कोल।
0: मुख्तियार जी स्वागत है तुहाडा, तैयार हो फिर ढिले जे लग रहे हो, की चक्कर है?
1: हां जी
0: कम कुम तो आयो?
1: नहीं नहीं घर ही होई दा, दुकानदारी करने है दुकान
0: ते। घर ही होई दा तुसी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आ जाओ फिर सवाल दा दियो जवाब, देखदे हां तुसी सवाल दा जवाब दे पाउंदे हो कि नहीं। तैयार हो जी? हां जी आ जाओ, खाण पीण दा सवाल पुछदे हां तुहानू। जेकर गर्म चाह दे विच बिस्कुट डबोईए, सुन रहे हो, जेकर गर्म चाह दे विच आपां बिस्कुट डबोईए ते उह टुट के डिग जावे ते उहनू कढ्ढण दे लई, जे असी गर्म चाह दे विच बिस्कुट डबोने आ ना तां टुट के डिग जांदा,
1: हां जी,
0: ते उहनू कढ्ढण दे लई सब तों वधिया हथियार केड़ा है?

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा प्रगटाया है कि

ये मेरे तक मैसेज पहुंचा रहे ने, थैंक यू सो मच जी। और होर भी साढ़े लिसनर्स, आदरणीय प्रसारक महोदय जी, प्यार भरा नमस्कार। फिल्म तुलसी तेरे आंगन की का गाना सुनना चाहते ने, गाना भी मैं पहला सुना चुका जी। इस फिल्म का नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नेवाहकर, निर्मला नेवाहकर, विशाल नेवाहकर, सोपान तांडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहरकरे, ये मैसेज साढ़े तक पहुँचे जी। थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए। अगला मैसेज है सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली जिला संगरूर तो एनी सोंग सुनना चाहते ने जी, कोई भी गाना कहते ने सुना दो सानू। ते ये मैसेजेस मेरे तक पहुंच रहे हैं, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार, सड़क तक पहुंचा रहे हैं जी। सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, ये मैसेज आया जी, थैंक यू सो मच। और चलो फिर फटाफट असी चमत्कार फिल्म का ट्रैक सुनते हैं जी, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।

भटकू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू मैसेज मेरे तक पहुँचाउण दे लई जी। गंगानगर से ममता शर्मा, दूजा विवाह फिल्म दा पंजाबी गाना सुनना चाहुंदे ने ते इन्हां नूं जरूर सुनावांगे जी आपां। थैंक यू मैसेज मेरे तक पहुँचाउण दे लई जी। और एक होर मैसेज मेरे तक पहुँचे जी, गांव नाईवाला, ज़िला हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, हरीश भाई, कोई भी गाना कहिंदे ने सुना दिओ। थैंक यू मेरे तक मैसेज पहुँचाउण दे लई जी, थैंक यू। और चलो फिर असी लड़की साइकिल वाली सुनते हैं जी, आ जाओ।

कभी कभी दिलों में समेट कर रखते हैं हम हजारों राज, और जब दिल कभी कभी खुलता है किसी मोड़ पर, किसी सिचुएशन पर, तो अनंत जज्बात, अनंत एहसास ताबड़तोड़ बाहर आते हैं और हमें समझ भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इतने जज्बात हमने अपने दिल में दबा कर रखे थे, वो झूठ नहीं होता, वो होता है असल। जैसे हमें प्यार करना सिखाती है गजल, शाम गजल जिसका आगाज हो चुका है, और हरीश नाड़े तुहाड़े और गजलां दे इस प्रोग्राम दे विच उम्मीद है कि प्यार होर वधेगा और एहसास जज्बात दी ये जड़ी डोर है होर मजबूत होएगी बहुत ज़्यादा। भावें कोई नाल है या भावें कोई गुजरिया होया जमाना बन गया तुहाड़े लिए।

कभी कभी कोई शख्स इतना हमारा अपना हो जाता है कि जब जब उससे बात होती है तो ऐसा लगता है कि कोई कमी पूरी हो गई है। ऐसा लगता है कि कुछ था जो अब मुकम्मल हो गया। और बात खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि ना जाने फिर क्या अधूरापन आ गया है हमारे अंदर। ये ना जाने कैसी फीलिंग है, ना जाने ये क्या एहसास है जो उसके होने से मुकम्मल होता है और उसके चले जाने से अधूरा। ना जाने ये कमी उसके साथ से पूरी होगी या उसके ख्वाब से। प्यार है उसका जिसका असर मुझ पर छाता जा रहा है, छाता जा रहा है, और मैं उसका होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।

मुझे नहीं लगता कि उसके पास मेरी कोई भी खास याद होगी, ना कोई तस्वीर जिसे वो कभी छुपा कर देखती हो, ना कोई पुराना मैसेज जिसे पढ़कर मुस्कुराती हो, ना कोई ऐसी निशानी जिसे उसने सालों संभाल कर रखा हो। और एक मैं हूं, मैंने उससे जुड़ी हर एक चीज को ऐसे सहेज कर रखा है जैसे वो सामान नहीं मेरी जिंदगी के हिस्से हों। उसके दिए हुए छोटे छोटे तोहफे, उसकी लिखी हुई बातें, वो तस्वीरें जिनमें शायद उसे कुछ खास ना दिखे पर मुझे उनमें पूरी एक दुनिया दिखाई देती है। क्योंकि मेरे लिए तो दुनिया वही है, वो और उसका प्यार, उसकी याद, सिर्फ उसकी याद है।

आज सड़क पर अचानक उससे मुलाकात हुई, जिसे पाने के लिए कभी मैं उस रब से लड़ गया था। ना जाने क्यों आज उसे देखकर मेरे दिल में कुछ भी नहीं हुआ। वो पास आई, हेलो बोली, कैसे हो? मैंने बस इतना ही कहा, ठीक हूं। ना आंखें नम हुई, ना दिल धड़का, ना उसे रोकने का मन हुआ। वो चली गई और मैं काफी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। जिसके बिना मर जाने की बातें करता था, आज वही कुछ भी नहीं लग रही थी। पर ना जाने क्यों दिल पर एक बोझ सा था, और वो बोझ मुझे लगता है कि ताउम्र रहेगा। उसके पास साथ होने से तो, सामने होने से तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो चला गया तो वो दर्द असह था। और फिर उसकी कही हर बात याद आई, जब उसने उस रिश्ते को तोड़ दिया था जो कभी दोनों के मिलन से था, दोनों के साथ से था। दोनों साथ नहीं तो रिश्ता क्या? मगर याद

याद, पता है कल रात वो याद नहीं, वो सपने में आई, कुछ पल के लिए ही सही, जैसे पहले आया करती थी, वैसे ही हंसी, वैसी ही बातें, और जाते जाते वही एहसास छोड़ गई कि शायद अब भी पहले जैसा है सब कुछ। कुछ इशारों में बता रही थी लेकिन शायद मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उन इशारों में, उसकी अदाओं में प्यार था, वही प्यार जो पहले था, और उस

से मैं प्यार करता था। और इशारों ही इशारों में गुफ्तगू हो रही थी, प्यारी थी। दिल था कि ये सपना ताउम्र ऐसे ही चलता रहे, लेकिन सपना तो सपना है, पूरा तो नहीं हो सकता। शाम गजल तुसी सुन रहे सी, और इस शाम गजल नू इत्थे ही ख़त्म कर दें और इस गजल दे नाल अगे वधें। और थोड़ी पेशे खिदमत है इस प्रोग्राम दी अखीरली गजल।

एक प्यार का नगमा है जिसका आगाज हो चुका है, और हरीश नाल है थोड़े, और ये रात होर भी खूबसूरत होएगी, होर भी गहराएगी, और कोसे कोसे एहसासों उत्ते मरहम लगाउंदी ये रात, और ये प्यारे प्यारे रेट्रो सॉन्ग्स का साथ। हरीश नाल है थोड़े और ये ट्रैक्स और मेरिया गल्ला कट्ठिया, ये दूरियां गवाह है मेरे सब्र की, कि मैं उसको छुए बिना भी चाह सकता हूं बेपनाह। वो जा रहा है लेकिन

उस दिन मैंने पहली बार उसे मायूस देखा। और उसके अल्फाजों में एक अजीब सी कमी लगी मुझे। पहली बार उसके अल्फाजों में वो रस नहीं था।

जो हर बार मुझे सुनाई पड़ता था कानों में। हम पास नहीं थे, लेकिन पास ना होकर भी एक दूसरे के साथ थे। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि वो मेरे साथ नहीं था, मेरे पास नहीं था। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो कहीं खोया हुआ था, बात करते हुए भी वो बात में नहीं था। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे खो दिया। ये सच था या झूठ, इसका पता भी मुझे उसी वक्त लग गया जब उसने कहा, अब हम बात नहीं कर सकते।

प्यार होता है कभी कभी किसी के साथ, और कुछ चीजें होती हैं, मजबूरियां होती हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पाता। और फिर कभी कभी यूं भी होता है कि वादे होते हैं, करार होते हैं, वो मुकम्मल नहीं होते।

और कभी कभी वो हंसता मुस्कुराता चेहरा बुत सा मालूम पड़ जाता है। लगता है कि वो बात करता है, सुनता है, समझता है, लेकिन हरकत नहीं करता। उसमें एहसास नहीं है, जज्बात नहीं है, या वो समझना चाहता नहीं है। क्या आपकी मुलाकात हुई है किसी ऐसे शख्स से जो बीच मझधार में जाकर आपकी बाजू छोड़ दे? क्या आपको मिला है कभी कोई ऐसा? शायद।

टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, रोते हुए दिल को मनाना आता है। उसे कह दो हमारी फिक्र ना करे, क्योंकि हमें दर्द में भी मुस्कुराना आता है।

हम तो सीधे सादे सादगी से चाहने वाले हैं किसी को। हमारे दिल में जो है वो सूरत पे है, हमें कुछ भी छुपाना नहीं आता। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना ये जीना कैसा जीना, और तुम्हारे बिना ये जीवन कैसा जीवन।

उम्मीद है कि किसी का दिल कभी टूटे ही ना, और जिसका साथ किसी के साथ है तो वो साथ ताउम्र ऐसे ही बना रहे। यही दुआ है, यही हमारी ख्वाहिश है आपके लिए। और आज दे इस प्रोग्राम नूं इत्थे ख़त्म करन दी इजाज़त दिओ। तुहाडे नाल महफिल दोबारा लगेगी, दोबारा महफिल लगावांगे। जिंदगी दे सफ़र दे विच तुहाडे नाल दोबारा फिर मुलाकात होएगी। तद तक लई तुसी इंजॉय करदे रहो, हसदे रहो, मुस्कराउंदे रहो। बाय, टेक केयर। इस प्रोग्राम दा अखीरला ट्रैक तुहाडी पेशे खिदमत है।